0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: Oh!

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
3: आप सुन रहे हैं CMRX 9, मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 11 AM. Stay tuned.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती है बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 और हिमेश रेशमिया की आवाज में हरिओम। हरिओम से हमने दिन की कर ली है शुरुआत और बाहर का तापमान है 26 डिग्री सेल्सियस। यूवी इज वेरी हाई, इंक्रीज फ्रॉम यस्टरडे, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स आज पहुंचेंगे 27 डिग्रीज तक। राइट नाउ इट्स 24-25 डिग्रीज, फील्स लाइक 30, एंड टुमारोज टेम्परेचर्स 30 डिग्रीज मैक्सिमम, थर्सडे 30, फ्राइडे 29, एंड सैटरडे इज ऑल्सो 29। दिस इज ब्यूटिफुल समर, इंजॉय करें। एंड सनसेट होगा 9:02 पर, सो आस्ते आस्ते सनसेट एक एक आधा आधा मिनट पीछे की तरफ आ रहा है। एंड 12:15 हमारी हेडलाइंस बिल्कुल रेडी है। द सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस के सुल्तान जी, जो कि अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग डील्स आपको ऑफर कर रहे हैं। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन, 905-450-2828। एंड द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा। आई एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 डेज अ वीक, ब्रैम्पटन, जॉर्ज टाउन, दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। नेम ब्रांड सनग्लासेस पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं, उसका फायदा लें। कल का दिन, US eliminated from the tournament, Argentina up against Egypt, Switzerland taking on Colombia today in the final round of 16 matches। और US का देखिए, Canada 3-0 से हारा और US ने कहा कि भैया हम पीछे क्यों रहेंगे, तो Belgium ने 4-1 से US को हराया। ट्रंप साहब रेड कार्ड को ट्रंप कार्ड में बदलते रह गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। एंड में तो भाई पिच पर गेम ही खेलनी पड़ती है। स्पेन ने पोर्चुगल को 1-0 से हराया। दैट वाज डेविस्टेटिंग टू सी रोनाल्डो, यू नो, जिस तरह से उनके फैंस इमोशनल थे, रोनाल्डो हिमसेल्फ वाज इमोशनल एट 41। दिस वाज इज हिज लास्ट वर्ल्ड कप, और आखिरी बार पोर्चुगल की जर्सी पहनकर रोनाल्डो उतरे थे ग्राउंड पर। एंड उसके बाद, कल के बाद, दैट विल नेवर एवर हैपन अगेन। सो दैट वॉज डेफिनेटली अ वेरी सैड मोमेंट एंड नोस्टैल्जिया है, यू नो, पीपल दैट लव हिम एंड मिलियंस लव हिम। मुझे लगता है बिहार के किसी कोने में, छपड़ा जिले के किसी छोटे से गांव में कोई इंसान रोनाल्डो का फैन है। पंजाब के शायद छोटे से एक पिंड में, जिसका नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, भलूड़ नाम का पिंड, वहाँ पे रोनाल्डो के फैन हैं। तमिलनाडु का बहुत ही एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट करूर, वहाँ पर भी शायद रोनाल्डो के फैंस हैं। सो दुनिया के हर कोने में, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, एवरीवन लव्स रोनाल्डो। सो ऑब्वियसली हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। इनफैक्ट मेरे टेक्निकल डायरेक्टर कार्तिक साहब, उनके 7 साल के बेटे यश का, यश भी फैन है किसका, जिसने अभी अभी शुरू किया है सॉकर को देखना, फॉलो करना, रोनाल्डो का। सो आई थिंक इट्स हार्ट ब्रेकिंग ओवरऑल, जब आप अपने हीरो को देखते हैं, यू नो, व्हेन यू अपने चैंपियन को देखते हैं, टू वॉक अवे, यू नो, ऑफ द फील्ड विद दोज इमोशंस, दोज टीयर्स, इट इज डेफिनेटली डेफिनेटली वेरी हार्ट ब्रेकिंग। बट वन डे थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड। मोहम्मद अली भी एक वो आखिरी दिन था जब रिंग से उतरे थे। सचिन तेंदुलकर भी एक आखिरी दिन था जब पिच से वॉक ऑफ किए थे, वॉक अवे किए थे, एंड नेवर केम बैक। बट दैट्स हाउ दीज ग्रेट लेजेंड्स डू एंटरटेन अस। दे टच आवर लाइव्स, दे टच आवर हार्ट्स, एंड देन वन डे, यू नो, द कर्टन्स हैव टू कम डाउन, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। चलिए, आज मेसी की बारी है, क्योंकि अर्जेंटीना की गेम है इजिप्ट के साथ। सो प्रे करते हैं कि भैया मेसी के साथ ऐसा ना हो जो नेमार के साथ और रोनाल्डो के साथ हुआ। लेट्स होप दे मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल वाला राउंड। 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है। लेंगे बहुत ही छोटी सी ब्रेक, 12:15 की हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस।

0: जोशी।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: Hi अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905 4573232 Clear Optical by Varun Kanda.

0: की राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: काव्य होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्य होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिस्सागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296. इट्स 289-891-0296. आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम. Remember, you're in good hands with Allstate.
3: Good afternoon. शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस.

0: Welcome back, friends. And the headlines are brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, McVean Dental Care, Kavya Home Care, Clear Optical by Varun Kanda, Brampton TV and Appliances, Allstate Insurance ki Gurvinder Bamra, Win Lifetime Trading. Shuru karte taza tareen headlines. US Cybersecurity Agency ne Anthropic AI model ka istemal kiya to audit government software. US Senator ne Pakistan ke Iran mediator role par kai sawal uthaye aur kaha ye wo desh hai jisne Osama bin Laden ko panah di thi. और फराज फंडिंग प्रोब के बीच यूके ने ओवरसीज डोनेशन के रूल्स को टाइटन किया. प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएस से कहा कि तुर्की को F-35 जेट सेल ना करें, इससे पावर बैलेंस बिगड़ेगा. डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट ओपनिंग बेल को रिंग किया एज ही टाइज प्रेसिडेंसी टू मार्केट गेन्स. ओहायो के एक घर पर 911 कॉल को रिस्पॉन्ड करते वक्त पुलिस ऑफिसर को शूट किया गया. सस्पेक्ट एंड टू अदर पीपल ऑल्सो डाइड. Xbox CEO आशा शर्मा ने 3200 employees के फायर होने के बाद लिखा मैसेज, चेंजिंग मार्केट की गुहार लगाई. Microsoft to lay off 4800 workers in the latest wave of AI-led job cuts. 6 महीनों में क्यूबा ने थर्ड नेशन वाइड ब्लैकआउट फेस किया. और दूसरी ओर कीव रीजन में 23 लोग मारे गए. यूक्रेन ने इंटरसेप्टर मिसाइल शॉर्टेज की वार्निंग दी. दूसरी और लोकल समाचारों में टेस्ट ऑफ लिटिल जमैका कैंसिल हुआ आफ्टर परमिटिंग इश्यूज. एंड पुलिस ने $20 million की कोकेन मिलियंस ऑफ कैश सीज किया. मल्टीपल पीपल हैव बीन अरेस्टेड. प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि अल्बर्टा को फॉर्मर फेडरल गवर्नमेंट ने गार्बेज की तरह ट्रीट किया है. Second toddler attacked by coyote in Whitby left with some serious injuries. And Renetta Ford, wife of late Toronto Mayor Rob Ford ka hua nidhan. She was 55. Brampton mein crash ke baad man on e-scooter has been critically injured. भारतीय समाचारों में मुंबई रेन से एक हफ्ते में 1100 trees collapse हुए. एक दिन में 500 पेड़ गिरे. 3 लोग मारे भी गए. सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की अपील को रिजेक्ट कर दिया है. चीफ मिनिस्टर विजय स्टैम्पीड के बाद पहली बार करूर जाएंगे. हैदराबाद की एक महिला ने अपने हस्बैंड को टॉयलेट क्लीनर से इंजेक्ट करके मार डाला. पुलिस ने उसे अरेस्ट किया. गवर्नमेंट के अनुसार असम में 70 लोगों ने सिटीजनशिप अप्लाई की अंडर द न्यू लॉ. सिर्फ 6 ही सक्सेसफुल रहे. पुणे रेन्स ट्रिगर्स लैंडस्लाइड्स. 4 लोग मारे गए. 2 पीपल स्वेप्ट अवे. उड़ीसा में भारी बारिश ने टॉडलर की जान ली. फ्लैश फ्लड्स का खतरा. बेंगलुरु कपल ने फाइट के दौरान 11 महीने के बेबी की जान ली. पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट था बट फेल ऑफ द बेड, ये कहा गया उन्हें. एंड मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नॉमिनेशन रिजेक्शन पर कांग्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया. बीजेपी यूथ लीडर को डिटेन किया गया ओवर रोड रेज असॉल्ट इन गुवाहाटी. इनॉग्रेशन के कुछ ही हफ्ते बाद लैंडस्लाइड से मुंबई पूना मिसिंग लिंक को शट किया गया. प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडोनेशिया विजिट के दौरान एस्ट्रा मिसाइल्स और ब्रह्मोस बैटरी डिफेंस डील्स पर हुए हस्ताक्षर. और हिमाचल में एक 75 साल के शख्स के पास 32 डिग्रीज हैं. हाल ही में उन्होंने एक एग्जाम के लिए फिर से अपीयर किया फॉर द 33rd डिग्री ऑफ हिज लाइफ. पाकिस्तान की खबरों से गवर्नमेंट के रिवाइज प्राइवेटाइजेशन प्लान में 3 और एयरपोर्ट शामिल किए गए. कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को लिस्ट में ऐड किया गया. स्टेट मिनिस्टर के अनुसार एक्टिव डिजिटल पेमेंट मर्चेंट सरपास 2 million. बिलाल अजहर कयानी ने नोट किया कि एनुअल डिजिटल ट्रांजेक्शन रोज फ्रॉम 6.9 billion टू 11.3 billion. इंडिया के साथ टेंशन्स के बीच पाकिस्तान ने कहा अपने वाटर शेयर को पाने के लिए हर कदम उठाएंगे. मिलिट्री कमांडर्स कंडेम ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर. सीडीएम मुनीर ने कमांडर से गुहार लगाई टू मेंटेन ऑपरेशनल रेडीनेस. पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर मर्डर सस्पेक्ट को आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जेल भेजा गया. फेटल शूटिंग को लेकर जज ने सस्पेक्ट से सवाल पूछे. ऑफिशियल के अनुसार स्टेट इंस्टीट्यूशंस के पास एविडेंस है ऑफ इंडियन फाइंडिंग बिहाइंड JAAC's एजेंडा इन AJK. और दूसरी तरफ लाहौर की अदालत ने शख्स को क्विट किया जिसे ब्लास्फेमी का अक्यूज्ड पाया गया था. वजह बनी अनरिलायबल टेस्टिमोनीज. रिपोर्ट के अनुसार यूएस ईरान डील के बाद फ्रैक्चर्ड लीबिया के लिए पाकिस्तान बना पीस मेकर. इस्लामाबाद ने लीबिया के राइवल्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पावर सेंटर से चुपचाप मीडिएशन शुरू कर दी है. नैब में प्रिवेंट क्लोजर ऑफ मेनी ग्राफ केसेस. दूसरी ओर स्पोर्ट्स जगत से, फीफा वर्ल्ड कप मैचेस में कल स्पेन ने पोर्चुगल को 1-0 से हराया, बेल्जियम बीट यूएसए 4-1। वर्ल्ड कप मैचेस में आज अर्जेंटीना और इजिप्ट हैं आमने सामने, स्विट्जरलैंड प्लेज कोलंबो एट 4 PM और दूसरी ओर फर्स्ट क्वार्टर फाइनल्स ऑन थर्सडे बिटवीन फ्रांस एंड मोरक्को एट 4 PM। सेकेंड क्वार्टर फाइनल्स में स्पेन और बेल्जियम होंगे आमने सामने, थर्ड क्वार्टर्स में नॉर्वे वर्सेज इंग्लैंड। बॉलीवुड खबरों से, कंगना रनौत के क्वीन 2 प्रोड्यूसर्स को सू किया गया फॉर 250 करोड़ रुपीज बाय फैंटम स्टूडियोज ओवर अनऑथराइज सीक्वल। और रवि किशन को दिल्ली हाईकोर्ट से इंटरम रिलीफ मिली एज हाईकोर्ट रिस्ट्रेन्स यूज ऑफ AI डीफेक्स एंड जनरेटिव टेक्नोलॉजी इन पर्सनैलिटी राइट्स लॉ सूट। आलिया भट्ट की अल्फा मंडे को बॉक्स ऑफिस पर खासा डिप हुई। Z5 ने सतलुज प्राइवेसी को कंडेम किया आफ्टर फुल मूवी लीक्स ऑनलाइन आफ्टर रिमूवल। फर्स्ट लुक ऑफ राजकुमार राव स्टारर दादा द सौरव गांगुली स्टोरी लाइकली टू बी अनवील्ड ऑन 8th of July, यानी टुमारो। एंड करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस ने रणबीर कपूर की रामायणा के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को 250 करोड़ रुपए में हासिल कर लिया है। दिलीप कुमार की 5th डेथ एनिवर्सरी पर सायरा बानो शेयर्स एन इमोशनल नोट। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055, स्टूडियो का नंबर है। काफी महीने पहले की बात है, मैंने ऑन एयर इस टॉपिक को आपके साथ, लिसनर्स के साथ शेयर किया था, AI रिलेटेड। एंड आई मेंशनड एट दैट टाइम कि AI विल एंड अप ईटिंग thousands and thousands and thousands of jobs. Some of my very lovely listeners called in, a lot of them agreed with me, and couple of the listeners did not agree with me. उनको उन्होंने उस नैरेटिव को फॉलो किया जो नैरेटिव हमें बताया जा रहा है, कुछ गवर्नमेंट्स बता रही हैं, कुछ AI चलाने वाले बता रहे हैं कि भाई दिस विल मेक योर लाइफ ईजी। इट विल नॉट मेक आर लाइफ ईजी, इट विल मेक पीपल सिट एट होम विदाउट अ जॉब। और इसी वजह से आज अगर आप दो खबरों पे ऊपर गौर आपने डाला होगा, एक्सबॉक्स की सीईओ हैं आशा शर्मा, उन्होंने 3200 एम्प्लॉयज के फायर होने के बाद मैसेज लिखा है कि ऑब्वियसली दिस इज ड्यू टू AI। माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग टू ले ऑफ 4800 वर्कर्स इन लेटेस्ट वेव ऑफ AI लेड जॉब कट्स। I don't know how AI is going to help us, but it is definitely going to destroy us to an extent, destroy families. Kisi bhi company mein 4800 log, 4800 log jab ghar bithaye jate hain, uska matlab ye hai ki 20 se 25-30 hazar individuals get affected. Every family has 4 to 5 people. Do the math. Pehle caller ko lete. Puneet ji, you're on air. Please go ahead.
1: Okay, I got some good news about
0: Puneet ji, aap on air hain.
1: Egypt put one goal into Argentina. And this Egypt goalkeeper stopped Messi's penalty goal.
0: Okay, I did not hear the initial part of jo aapne kaha. If you can please repeat.
1: Egypt already has put a goal into
0: Argentina. Egypt ne already ek goal score kar diya hai. Thank you Puneet ji for letting us know, because I was on air when the game started at 12, and yes, right now live game chal rahi hai. Unbelievable. I'm an Argentina supporter.
1: Yeah, and so. Egypt's goalkeeper stopped Messi's penalty goal.
0: Oh my God. Puneet ji, thank you for letting us know. But abhi picture abhi baki hai. Hopefully, Argentina will, get across this thing. But aap kisko support kar rahe
1: hai? Egypt ko.
0: Wow, very interesting. And chaliye, best of luck to your team and best of luck to my team. Let's hope my team wins and we can hope ki aapki team jo hai, I can't say win kare, par chaliye jaisa bhi hai ab good luck to you as well.
1: Okay, thank you.
0: Thank you Puneet ji. Aap on air hain, please go ahead. Agle caller ko lete hain.
2: हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है
0: जी, फर्स्ट क्लास। अभी इजिप्ट ने गोल कर दिया है तो इतने ठीक भी नहीं है, बट इट्स ओके, आई हैव टू से
2: नहीं। लेकिन आप इजिप्ट को देखे, किसी को देखे, लेकिन हमें अपने आप से कुछ सवाल कर लेने चाहिए।
0: अच्छा,
2: कि 1.3 बिलियन लोग हैं,
0: 1.4 है,
2: 1.4 है, इंडिया पाकिस्तान मिला रहा हूँ,
0: नहीं मिला के 1.5 ही हो जाएंगे मुझे तो लगता है। 1.5
2: और अभी मुसलसल बढ़ रहे हैं, रोज 10-20 हजार पैदा भी हो रहे हैं साथ साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो ये बढ़ते जाएंगे। बात ये है, आप देखिए इंटरनेशनल में, ये सॉकर या फुटबॉल में इंटरनेशनल टीमें आई है ना, इंडिया नजर आता है ना पाकिस्तान नजर आता है, उसकी वजह ये है कि गुलामी का जो टीका इनको लगा हुआ है क्रिकेट का,
0: जी जी जी,
2: इसके सिवा इनको कुछ नजर नहीं आता।
0: बिल्कुल,
2: ठीक है,
0: बिल्कुल।
2: ये जो सॉकर है ना, सॉकर गरीबों का खेल है। वो कैसे, हमें याद है हमारे गली मोहल्ले में जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे
0: जी,
2: वो पुराने कपड़े जमा करके उस पे रबर बैंड चढ़ा के गेंद बना लेते थे और खेलना शुरू कर देते थे। और हम जो थे उस वक्त 30 रुपए या 40 रुपए हर हफ्ते माँ से लेके जाते थे कि वो सफेद कपड़े पहन के गोरा साफ बन के, काला आदमी गोरा साफ बन के क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो गुलामी है ना जहन की, इसका कोई इलाज नहीं है। और इससे अभी पता नहीं 50,000 लोग बोलेंगे यार तुम पागल हो, तुम क्रिकेट को बुरा कहते हो। ये ओ भाई आपका गेम ही नहीं है, ये निशानी है, आप पे टप्पा है गुलामी का। व्हाई यू गाइस डोंट नो इट। अभी देखो ये सॉकर में
0: जी
2: कनाडा ने $1 बिलियन खर्च किए ना, अभी कितने खर्च किए
0: जी, मिलियंस तो खर्चे हैं, बिलियन अगर नहीं भी खर्चे हैं तो,
2: नहीं मिलियन नहीं खर्चे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो आगे पीछे। क्या ये 4-6 मैच जो यहाँ हुए, आज मेरे ख्याल में आखिरी मैच है कैनेडियन सॉइल पे, ठीक है। आप पूछे जो भी मेंबर असेंबली आए कि भाई सिक्योरिटी है नहीं, तो हर चीज में प्रॉब्लम है, बच्चों के लिए जॉब्स नहीं है, स्कूल में मामले बड़ी क्लासेस है, तो तुमको यही अय्याशी सुधी थी करने के लिए। हाँ अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं तो लोगों को स्किल दो। अभी आप AI का बता रहे हो, इसका उपाय कुछ किया गवर्नमेंट ने? कुछ भी नहीं किया
0: फिलहाल तो, कुछ नहीं किया है, मतलब
2: कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये इनको चाहिए अपनी इंडस्ट्रियां डेवलप करे, और खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो इंडिया पाकिस्तान इस टाइप की जो कंट्री है,
0: इंडिया इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड एनीमोर एक्चुअली।
2: यार देखो मेरी बात सुनो,
0: ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, यू हैव टू रीड ऑन दैट, इंडिया इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड नेशन एनीमोर।
2: नहीं ये एक सेकंड, बहुत सारे लोग,
0: और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा इंडिया से ताल्लुक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इट्स अ फैक्ट, इंडिया इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड नेशन एनीमोर।
2: अच्छा पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड कहोगे आप?
0: इट्स डिबेटेबल, या
2: नहीं आप नहीं कह सकते। पाकिस्तान जाके देखो, कोई रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिलती, रोड पे गाड़ी पार्क करने को नहीं मिलती, हर नई गाड़ी पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है, और सड़क पे कोई आदमी नहीं सोता पाकिस्तान में।
0: अच्छा मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ, IMF की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, इंडिया इज क्लासिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशंस और IMF एज एन इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, और इंडिया बोस्ट करता है वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल GDP और 3rd लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। ये देश थर्ड वर्ल्ड नहीं होता है।
2: आपको आखिरी बात कहने लगा हूं।
0: जी
2: ये सुन ले,
0: बाकी गरीबी, मैं गरीबी पे डिबेट नहीं कर रहा हूं।
2: अभी देखे आपके जो किचन में किसी आदमी की हंडी में जो है ना इकोनॉमी आपकी, और बड़े बड़े फिलोसफर बड़े बड़े GDP उधर जाके खत्म हो जाती है, उसके हंडी में क्या है?
0: जी
2: सूखी रोटी और दाल खा रहा है बेचारा, और नंगा आधा घूम रहा है
0: जी। ऐसे तो होमलेस लोगों की कोई कमी अब टोरंटो की सड़कों पे भी नहीं है। देखिए यू हैव टू कीप इन माइंड द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया हैज एंड एनी अदर कंट्री हैज।
2: भाई चाइना की पॉपुलेशन नहीं है, गए आप चाइना, जाओ ना चाइना,
0: चाइना तो आधी खबरें दुनिया तक पहुंचाता ही नहीं है, दैट इज द थिंग विद चाइना।
2: नहीं नहीं आप इनसाइड जाओ, मैं डीप चाइना में, मेरा जो काम है, मेरा जो सब्जेक्ट है
0: जी,
2: सब्जेक्ट क्या मेरी फील ऐसी है, मैं तो बॉटम तक जाता हूँ, मैं तो माइन के अंदर जो कोयला निकालते हैं उनके साथ बैठ के चाय पीता हूँ
0: जी,
2: मेरे को छोड़ दे। बात यह है पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान ने IMF के या किसी के भी पैसे वापस नहीं करने, आप क्या समझ रहे हो? हम पैसे इसलिए ले रहे हैं पाकिस्तानी के वापस करेंगे? हम तो गरीब नहीं हुए
0: जी,
2: आपको देने पैसे।
0: ये भी एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ टेक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक ही मतलब जिसको कहते हैं ना लाइन में काफी चीजें जो है छेड़ दी हैं, काफी चीजों को आपके व्यूज हैं, आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स व्यूज, आई मे अग्री विद योर व्यूज और मे नॉट एंड वाइस वर्सा, आप भी मेरे कुछ व्यूज से अग्री करें या ना करें, बट आई डू रिस्पेक्ट योर व्यूज, यू नो इवन दो आई मे अग्री डिसएग्री ऑन फ्यू थिंग्स। पॉइंट चलिए ये है कि चाइना के साथ हम तुलना इंडिया की मैं कर भी नहीं रहा हूँ, बिकॉज चाइना इंडिया से है आगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंडिया थर्ड वर्ल्ड नेशन historically after 1947 kaha jata tha for a very, very, very long time. Lekin India is not a third world country. Aur ye aap koi bhi jitne log jagruk hain us cheez ke bare mein shayad jante hain, jo nahi hain, aap pad sakte hain. Ashok ji maybe is pe thodi si light dal sakte hain and then we'll move to the next caller. Ashok ji, aap on air hain, please go ahead.
3: नमस्कार सनी जी.
0: जी नमस्कार जी, प्लीज गो अहेड.
3: तो उम्मीद है अर्जेंटीना आज जीतेगी.
0: बिल्कुल उम्मीद है.
3: और मेरा प्रश्न ये है कि सर, इंडिया तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पाकिस्तान से उसकी तुलना करना बिल्कुल बेकार है. और क्योंकि वो तो IMF से लोन लेकर के चलता है, भारत लोन नहीं रहता, भारत इज ए डोनर कंट्री, हम पैसे देते हैं, लेते नहीं है. दूसरी बात फुटबॉल की ही कर लीजिए कि प्रेसिडेंट साहब ने रेड कार्ड के ऊपर से क्यों मना किया, ये तो गेम में दखलंदाजी की बात कर.
0: बिल्कुल दखलंदाजी थी ट्रंप ने जो किया था, विदाउट अ डाउट इट इज समथिंग दैट ओनली ट्रंप कैन डू, नो वन एल्स.
3: वो तो एम्पायर का फैसला होता है, एम्पायर इज द रेफरी इज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट.
0: नहीं, ट्रंप का एक डिफरेंट टेक था. ट्रंप ने कहा कि भाई वो रेड कार्ड इसलिए बदला गया बिकॉज इट्स नॉट द रेफरी बट इट्स एक्चुअली अ कमिटी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कमिटी भी रेफरीज की कमिटी होती है, विच ट्रंप प्रॉब्ली डज नॉट नो.
3: फिर ऐसे जितने खिलाड़ी खेले हैं जिनको रेड कार्ड दिखाया गया सबके कैंसिल कर दिए.
0: हाँ बिल्कुल, देखिए उसकी भरपाई अशोक जी कल हो गई ना, फील्ड पे जो हाल हुआ है अनफॉर्चुनेटली, जो बेल्जियम ने जिस तरह से US को हराया है, आई थिंक वो जवाब मिल गया ट्रम्प को.
3: भारत में एक शेडोल करके जगह है जिसे मिनी ब्राजील कहा जाता है, मैंने अपने लेख में भी लिखा है.
0: जी बिल्कुल.
3: और लेख उसको बहुत लोग पसंद करते हैं, खेलते हैं.
0: जी.
3: और भारत खेलों में बहुत आगे है क्योंकि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होना है, फिर ओलंपिक के लिए भी हम क्वालिफाई करने ही वाले हैं 2030 में. तो गेम्स की बात जो सज्जन आप कर रहे थे वो ना करें भारत के खेल के ऊपर तो अच्छा ही रहेगा.
0: बिल्कुल जी, ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है बिटवीन क्रिकेट एंड सॉकर, एंड आई थिंक हमारे जो लिसनर है उन्हें परहेज है क्रिकेट से, विच इज ओके, दैट इज हिज पर्सनल चॉइस एज वेल, बट अपने को कोई परहेज नहीं है. वेरी प्राउड टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन कंट्री यू नो इन क्रिकेट, और चलिए सॉकर में नहीं क्रिकेट में ही हो गए तो उसके लिए वी आर ऑल प्राउड. अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. एंड दिलीप कुमार साहब द ग्रेटेस्ट एवर जिन्हें कहा जाता है, एंड अनडाउटेडली ग्रेटेस्ट एवर, जिन्हें महानायक अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपना मेंटोर गुरु कहते हैं, या ये कहते हैं कि भाई दिलीप कुमार साहब को देख के तो हमने एक्टिंग सीखी है, ही अनडाउटेडली इज द ग्रेटेस्ट एवर. फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी दिलीप कुमार साहब की आज है, एंड सायरा बानो ने एक बहुत ही इमोशनल नोट शेयर किया, हम भी याद करते हैं द ग्रेटेस्ट लेजेंड को दिलीप कुमार साहब, मुकेश साहब की आवाज़ में बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है सुहाना सफर. आते हैं वापस.

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940. This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters, 289-748-4040 289-748-4040.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से.
3: अच्छी याद है. अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से.
2: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो.
4: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुल्चे, पाव भाजी, अमृतसरी कुल्चे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca. कॉल 905-458-2448.
0: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills.
5: Real estate is not easy business, और जो easy नहीं उसे easy बनाते हैं Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. घर खरीदना या फिर घर बेचना, first time home buyers या फिर investors, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल. ये है Raj Joshi, Realtor बेमिसाल. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty, 647-866-1086. 647-866-1086. Raj Joshi, सिर्फ नाम ही काफी है.
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और रितेश हमारे साथ है, रितेश पुरी जी फ्रॉम ब्रोकर यूनियन एंड ऑटो होम कमर्शियल इंश्योरेंस में एक्सपर्ट हैं अलका जी और रितेश की टीम. और इफ यू आर लुकिंग फॉर बेस्ट रेट्स, कंपेटिटिव रेट्स, बेस्ट कवरेजेस, नंबर नोट करें 4372378068. रितेश, आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर.
6: गुड आफ्टरनून सनी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते.
0: सेम ईयर ब्रदर, सेम ईयर. काफी सवाल है आपके लिए और आपको हम डालते हैं हॉट सीट पर और देखते हैं कि क्या सवालों के आप जवाब देते हैं. सबसे पहले तो सम एक्सीडेंट बेनिफिट्स हैव चेंज्ड ऑन July 1st, 2026, जिसका हम जैसो कई लोगों को आइडिया भी नहीं होगा. वॉट आर द एक्सीडेंट बेनिफिट्स इन ऑटो इंश्योरेंस, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें.
6: देखिए सनी जी, जो एक्सीडेंट बेनिफिट्स है ये आपकी ऑटो इंश्योरेंस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं. ये आपको हेल्प तब करते हैं रिकवरी में, जब आपको कोई इंजरीज हुई हैं, आप किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे. अब ज्यादातर लोगों की थिंकिंग होती है कि ओही है हमारे पास तो सब ठीक है, बट कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स और कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो आपके ओही शायद कवर ना कर सके, राइट? तो जो ये एक्सीडेंट बेनिफिट्स होते हैं आपको फाइनेंशियली तब हेल्प करते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन आपकी पॉलिसी में कौन से बेनिफिट्स इंक्लूडेड हैं, कुछ कौन से एक्सक्लूडेड हैं, तो ये सब जानने के लिए आप मुझे कॉल करें, डिस्कस करें, ताकि मैं आपको एजुकेट कर सकूं कि कौन से बेनिफिट्स आपके लिए जरूरी है.
0: दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस हमारे पास होती है, हम मंथली पैसे दे रहे होते हैं 200-400 जो भी हम मंथ के देते हैं, और आपको लगता है कि भाई मैं पूरी तरीके से कवर्ड हूँ, हर तरीके से कवर्ड हूँ, इनकम रिप्लेसमेंट और बाकी इंजरी जो हो गई, ऑल दैट, थर्ड पार्टी, दिस दैट, एवरीथिंग. बट अगर आप डिटेल्ड तरीके से जानना समझना चाहते हैं कि व्हाट कवरेज यू हैव, व्हाट आर यू कवर्ड फॉर, तो 4372378068
7: 8068 पर ऑटो होम कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए रितेश जी अलका जी को आप कॉल कर सकते हैं. रितेश, आई हैव ऑटो इंश्योरेंस, डजंट दैट मीन आई एम ऑटोमेटिकली फुली कवर्ड अगर मैं इंजर्ड होता हूं तो?
6: ये जरूरी नहीं होता सनी जी. अब ऐसी कुछ लोगों की होती है थिंकिंग कि जैसे हमारे पास ऑटो इंश्योरेंस है तो मतलब हमें सारे टाइप के एक्सीडेंट बेनिफिट मिल रहे हैं.
7: जी.
6: अब July 1st, 2026 से यही हुआ है कि कुछ एक्सीडेंट बेनिफिट्स हमारी पॉलिसी में कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं, और कुछ ऑप्शनल हो चुके हैं जैसे स्टैंडर्ड मेडिकल, रिहैबिलिटेशन, अटेंडेंट केयर, ये अभी भी आपकी पॉलिसी में है. बट जो कुछ और एक्सीडेंट बेनिफिट्स होते हैं वो अब ऑप्शनल हो चुके हैं. इसलिए अगर आपको इस पर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपने अपने एक्सीडेंट बेनिफिट समझने हैं कि आपके इंश्योरेंस में कौन कौन से इंक्लूडेड है, क्योंकि रेडियो पे सबको समझाना इतना इजी नहीं होता, तो इसलिए आप हमें कॉल करें, आपको डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि कौन से एक्सीडेंट बेनिफिट्स आपके लिए जरूरी हैं और कौन से नहीं.
7: बिल्कुल. एंड जिसके लिए रितेश जी से संपर्क करें 4372378068 4372378068. काफी चेंजेस एक्सीडेंट बेनिफिट्स में हुए हैं July 1st के बाद, तो उसकी जानकारी के लिए आप डेफिनेटली अलका जी, रितेश जी से संपर्क करें. और साथ ही साथ दे डील विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज, सो दे कैन शॉप अराउंड एंड गेट यू समथिंग दैट सूट्स यू द बेस्ट. जाने से पहले रितेश जी, हाउ डू आई नो इफ आई शुड कीप द स्टैंडर्ड बेनिफिट्स और बाय एक्स्ट्रा कवरेज, ये मुझे कैसे पता चलेगा?
6: देखिए सनी जी, इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं है, क्योंकि सबकी जो सिचुएशन होती है वो डिफरेंट होती है. अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हो सकता है कि उसको ज्यादा एक्सीडेंट बेनिफिट्स ऑप्शंस चाहिए हो. अब कुछ एम्प्लॉयड होते हैं जिनकी फैमिली होती है या फिर उनके पास इनफ सेविंग नहीं है कि इनकेस अगर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया तो वो अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके. और कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपकी वर्क प्लेस है वो आपको इनफ बेनिफिट्स नहीं दे रही, तो इस केस में ये जरूरी होता है कि आप हमारे साथ डिस्कस करें ताकि मैं आपकी जो सिचुएशन है वो समझ सकूं और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सीडेंट बेनिफिट्स की ऑप्शन प्रोवाइड करूं.
7: जी बिल्कुल. जिसके लिए 4372378068 रितेश एंड अलका जी की टीम एट ब्रोकर यूनियन, एंड कॉल करें ऑटो होम कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए रितेश एंड अलका जी. साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं, देर इज अ बारबेक्यू इवेंट ऑन July 18th होस्टेड बाय SJ फाइनेंशियल इन कोलैबोरेशन विद ब्रोकर यूनियन. 12 बजे दोपहर से 4 बजे हमारे सारे लिस्टनर्स जरूर वहां पे पहुंचे. अमन मेहता जी, अलका जी, रितेश, पूरी टीम इनकी वहां पर उपस्थित होंगे. 241 Clarence Street, Brampton, आपने पहुंचना है. 241 Clarence Street in Brampton. And इस जबरदस्त बारबेक्यू इवेंट को अटेंड करें अपने परिवार के साथ. बाकी कई बार कोई भी ऑटो होम इंश्योरेंस रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आप ढूंढ रहे हैं बेहतरीन, तो अमन जी विल बी देयर, रितेश, अलका जी, एवरीवन विल बी देयर वेटिंग फॉर यू ऑन 18th of July 12 noon to 4 PM. रितेश जी का नंबर एक बार फिर से 4372378068 4372378068. रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
6: थैंक यू सो मच सनी.
7: थैंक यू ब्रदर. 4372378068. सैटरडे आफ्टरनून होता है सेमिनार, 12:30 to 3 PM हर सैटरडे आफ्टरनून फ्री सेमिनार होता है. सीट रिजर्व करवा लीजिए. विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग, विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग, 905-206-1008. मुकेश एंड लता जी की आवाज में दिल तड़प तड़प के कह रहा है आबीजा. अगेन दिलीप कुमार साहब की 5th डेथ एनिवर्सरी है. ये एक और रिक्वेस्ट है जो प्ले करेंगे, उसके बाद जितनी भी आपकी बाकी की रिक्वेस्ट है वी विल कीप प्लेइंग देम. बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, बट इन एक्चुअलिटी इट फील्स लाइक 31 डिग्री सेल्सियस. और इजिप्ट और अर्जेंटीना की गेम 45 मिनट्स पहला हाफ खत्म होने वाला है 5 मिनट के अंदर. इजिप्ट इज एट 1, अर्जेंटीना एट 0. इस वर्ल्ड कप में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट दैट्स हाउ गेम्स आर. एंजॉय द सॉन्ग, आते हैं वापस.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086, 6478661086, राज जोशी, नाम ही काफी है।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। द वन एंड ओनली रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के राज जोशी जी हमारे साथ हैं। राज जी, आपका स्वागत है।
3: सनी जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको और प्यारे लिसनर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून
2: जी आपको।
3: सनी जी, एक बार फिर से मैं ब्रांटफोर्ड की जो लिस्टिंग कह सकता हूँ या इंफॉर्मेशन मैंने कल शेयर की है, फाइनल फेज के लिमिटेड लॉट रिमेनिंग है 36 फुट, 40 फुट, 44 फुट पर सिंगल्स इन द बेस्ट सेलिंग कम्युनिटी ऑफ ब्रांटफोर्ड। 747 से न्यू नेट ऑफ HST प्राइसिंग, इसमें होम्स बैकिंग ऑन टू वुड लॉट एंड ग्रीन स्पेस, यूनिक ब्रांटफोर्ड की लोकेशन है, सराउंडेड बाय 100 एकर्स ऑफ कंजर्वेशन बाय द ग्रैंड रिवर, वेरी क्लोज टू हाईवे 403 डाउनटाउन ब्रांटफोर्ड and Hamilton, exceptional selection of modern home designs to choose from, 9-foot ceilings and exclusive features. ye rahi Brantford ki information, koi bhi details aap chahte hain, you can contact us. Saath hi saath brand new release of 36 foot, 40 foot and 44 foot detached homes in Paris, 685 se starting hai, now under construction. स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम लॉट्स अवेलेबल हैं, डिपॉजिट एज लो एज $50,000, अपग्रेडेड एलिवेशंस हैं, समर 2027 क्लोजिंग्स, तो दैट गिव्स यू एम्पल टाइम टू मेक योर डिपॉजिट स्ट्रक्चर इन पीस। बेस्ट प्राइसिंग है फॉर सिंगल्स इन पेरिस, डू नॉट मिस आउट, हमें कॉन्टैक्ट कर लें, वी आर ऑलवेज देयर टू बी योर गाइडिंग हेल्पिंग हैंड इन योर रियल एस्टेट जर्नी। सनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया राज जी, 6478661086 राज जोशी जी का नंबर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: थैंक यू सर।
2: थैंक यू सर। 6478661086 एंड ओके, अगला गीत बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, फिल्म थी पापा कहते हैं और जुगल हंसराज पर फिल्माया, उदित नारायण की आवाज में, मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट है ये गीत। घर से निकलते इंजॉय करें, बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 30, मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट 27 डिग्रीज टुडे, एंड 21-year-old मिसागा में चार्ज हुआ है मल्टी व्हीकल थेफ्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड गैराजेस, 21 साल का लड़का। ब्लू जेस टोरंटो क्रश 10-1 बाय जायंट्स फॉर थर्ड स्ट्रेट लॉस, सीरीज कंटिन्यू टुनाइट, एंजॉय द सॉन्ग।

0: और बस नजर जो है ना उस वजह को ढूंढने की होनी चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कौन सी ऐसी चीज है आज के दिन में जो हमारे चेहरे पर स्माइल लेकर आ सकती है। और मेरे चेहरे पर तो स्माइल आती है मस्ती की रेलगाड़ी के साथ ही, और आप लोगों के साथ के साथ। कहते हैं कि अच्छे दिन अपने आप नहीं आते दोस्तों, अच्छी सोच और अच्छे कर्म उन्हें अच्छा बनाते हैं। और चलते रहो तो रास्ते भी साथ निभाते हैं, चलते रहो तो रास्ते भी साथ निभाते हैं, मुस्कुराते रहो तो मौसम भी गीत सुनाते हैं। उम्मीद का दामन दोस्तों कभी मत छोड़ना, यही छोटे छोटे सपने एक दिन हकीकत बन जाते हैं। तो आपकी खुशियों को हम सराहों पर लेते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा अमन, बहुत सारी खुशियाँ आएं और बहुत सारी स्माइल भी आए। चलिए दोस्तों हमेशा की तरह आज भी दीजिएगा शालिनी का साथ ड्यूरिंग और आफ्टर द शो। सीधे रब्ता कायम कर सकते हैं 416-569-7812 पर, 416-569-7812। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा लोकल खबरों के साथ, स्टे ट्यून्ड।
1: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.
0: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी, और अब नजर डालते हैं आज की बड़ी अहम खबरों पर। सबसे पहले टोरंटो से एक सैड न्यूज आ रही है। फॉर्मर मेयर रॉब फोर्ड की पत्नी रेनेटा फोर्ड का 55 साल की उम्र में निधन हो गया। इस खबर की पुष्टि ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड ने की। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार दुख में है और बच्चों के लिए ये बहुत कठिन वक्त है। रेनेटा फोर्ड 2019 फेडरल इलेक्शन में भी कैंडिडेट रह चुकी थी। अल्कोहल एंड गेमिंग कमीशन ऑफ ऑन्टारियो ने ग्रेट कनेडियन एंटरटेनमेंट पर $170,000 का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि पिकरिंग कैसीनो रिजॉर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं किया गया। इससे पहले माइनर्स के गैम्बलिंग करने पर भी कंपनी पर पेनल्टी लग चुकी है। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ अभी भी म्यूरल रेस में आगे चल रही हैं। एक पोल के मुताबिक चाओ को 49% सपोर्ट मिला जबकि ब्रैड ब्रैडफोर्ड को 40%। हालांकि मुकाबला धीरे धीरे क्लोज होता नजर आ रहा है। यूनिफोर और फोर्ड मोटर कंपनी के बीच नेगोसिएशंस जारी हैं। करीबन 5,000 वर्कर्स के लिए नई 3 साल की डील फाइनलाइज होनी है। अगर अग्रीमेंट नहीं बना तो लेबर एक्शन की संभावना भी बन सकती है। एक हेल्थ इम्पैक्ट, टोरंटो की हीट वेव का असर हॉस्पिटल्स पर भी नजर आ रहा है। सिर्फ 5 दिनों में 39 हीट रिलेटेड ईआर विजिट सामने आई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब हेल्थ सिस्टम पर सीधा प्रेशर डाल रहे हैं। एक एयर ट्रैवल अपडेट, एयर कनाडा ने यूएस राउट्स पर फ्लाइट्स कम करने का फैसला किया है। कारण है कि हाई जेट फ्यूल कॉस्ट और लो ट्रैवल डिमांड। फॉल सीजन से कई राउट्स टेम्परेरीली बंद या डिले कर दिए जाएंगे। ब्रैम्पटन में एक ई स्कूटर एक्सीडेंट में एक युवक को लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज आई हैं। घटना एलनडेल रोड एरिया में कल रात करीबन 10:40 पर हुई। पुलिस की मेजर कोलिजन यूनिट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आखिर में देते हैं वेदर अपडेट। आज का वेदर रहेगा सन और क्लाउड का मिक्स, हाई ऑफ 26 डिग्रीज, ह्यूमिड एक्स के साथ आपको महसूस हो सकता है 32 डिग्रीज। आज का ओवरनाइट लो जा सकता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थी आज की लोकल बड़ी और इम्पैक्टफुल खबरें। सुनते रहिए शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।
1: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, SHONmedia.com.

जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।

0: जिंदगी में कोई भी काम किया जाए उसमें अगर कंसिस्टेंसी हम लेकर आए तो वो काम बड़ा फलता है। और वो अगर बात हो पैसा कमाने की, आपके फाइनेंसेस की, तो उसमें तो और भी ज्यादा जरूरी होता है कंसिस्टेंसी फॉलो करना, क्योंकि हमारे बिल्स नहीं रुकते, हमारे खर्चे नहीं रुकते, तो हमारी अर्निंग्स क्यों रुकें, राइट? तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आया है विन लाइफ टाइम, एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेडिंग और ट्रेनिंग यहां पर होती है। और आपको बताया जाता है कि कैसे हर दिन आप हजारों डॉलर्स तक कमा सकते हैं। winlifetime.com इज द वेबसाइट टू विजिट। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बड़े रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफे जी। राफे जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू शॉन एक्सप्रेस।
1: जी, थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
0: बहुत बहुत शुक्रिया राफे जी, और मेनी मेनी थैंक्स टू यू फॉर यू नो गिविंग सच अ गुड ट्रेनिंग टू यू नो दोज हु आर अटेंडिंग योर सेमिनार्स, आपके लाइव फ्लोर पर जो लोग रहते हैं। तो एक सवाल आपसे ये है कि ये काम में सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कितना पैसा और कितना वक्त हमें देना पड़ेगा इस काम को?
1: सबसे आसान आंसर ये है कि पैसा नहीं चाहिए आपको। थोड़ा सा ऐसी स्किल चाहिए कि आप हमें फॉलो कर सकें।
0: अरे वाह।
1: जो अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन में आपको बिठाया जाएगा, 8 मेंटर्स हैं, 3 ऑफिसेज हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये स्किल होने चाहिए कि आप एक गुड फॉलोअर हो।
0: वाह।
1: शुरू में हमने आपको अंडर सुपरविजन दिखाना है, और आज भी लेस देन 10 मिनट्स के वर्क में मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने अपना डे का जो टारगेट मीट कर लिया था। किसी का टारगेट $100 पर डे है, तो किसी का $1,000 पर डे है। सो स्काई इज द बिगिनिंग, कोई भी आ सकता है, कोई भी सीख सकता है। वक्त कितना चाहिए, कुछ लोग सीख जाते हैं 14 दिनों में, तो कुछ लोगों को एक आध माह लगता है। तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमने इतना सिंपल अप्रोच कर दिया। हमारे ऑफिस में सेइंग है, इफ यू कैन ब्रीथ वी कैन टीच यू हाउ टू ट्रेड।
0: क्या बात है, सांस आनी चाहिए दोस्तों, और थोड़ा बहुत दिमाग भी होना चाहिए, जो चलो ऊपर वाले की ब्लेसिंग से हम सभी के पास इतना तो होता है कि हम एक कंप्यूटर चला लें बेसिक नॉलेज के साथ, राइट? तो बहुत अच्छी बात है राफी जी। अब ये बताएं कि वक्त कौन सा रहेगा दिन में, उन्हें कितने बजे पहुंचना होगा आपके सेंटर में ये काम को सीखने के लिए?
1: जी, सबसे पहले तो ये 5 मिनट के इंटरव्यू में मैं ज्यादा तो नहीं आंसर करूंगा, क्योंकि हमारा इंटरव्यू जनरली 3 से 5 घंटे तक चलता है।
0: अरे वाह।
1: क्योंकि लोग हर तरह के क्वेश्चन लेके आते हैं, कितनी इनकम रहेगी। तो पहला स्टेप ये है कि आने वाले सैटरडे को 1 PM सैटरडे का सेमिनार अटेंड करें और अपने टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन लेके आए, ताकि हमारा प्रेजेंटर आपके सामने पेश करे। एविडेंस के साथ में पेश करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स रेडियो इंटरव्यू में हम कुछ ऐसी चीज नहीं कह सकते जिसको हम इन पर्सन डिफेंड ना करें।
0: बिल्कुल।
1: तो आए सैटरडे के 1 PM फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार सुने, और आपको हम बता सकते हैं कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे।
0: साउंड्स लाइक अ ग्रेट प्लान। तो बिल्कुल फ्री आपका जो सेमिनार है आपके लिए प्लान हुआ है कमिंग सैटरडे एट 1 o'clock. Pick up your phone and call these 10 numbers right away. 905-206-1008 winlifetime.com. Rafi ji, thank you so much. Phir aap se judenge. Have a wonderful day. Take care.
1: Thank you.
2: Jamming as much variety into your workday as possible. Radio Resync complete. Hit music. Hit after hot hit.

0: इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s। मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज। ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू अर्ली 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844. जी दोस्तों, वेलकम बैक टू मस्ती की रेलगाड़ी। और जैसा अभी आपने सुना, राहुल कश्यप जी एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, एक से बढ़कर एक एक्साइटिंग चीजें होती हैं। और आज जुड़े हैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल लेकर एक लंबे अंतराल के बाद। नाउ राहुल जी इज फीलिंग मच बेटर एंड सो आर वी, और हम सुपर एक्साइटेड हैं ये सुनने के लिए कि आज क्या है राहुल जी के पास हम सभी लोगों के लिए। राहुल जी वेलकम, हाउ आर यू?
2: Shona ji, very good afternoon to you and all our listeners.
1: Good afternoon to you as well. And so nice to hear your voice and so good to know that you're feeling much better now.
2: Thank you so much. I know it took me almost over two weeks to get better. And it was not something I had planned, but theek hai, ho jata hai buddy. So now I'm back in full health. So yeah, we're back, back to coming on talking to you, talking to our listeners.
1: Wonderful.
2: And starting our hashtag home show again, so...
1: Yes, absolutely, because you are a workaholic person. और कभी कभी कहते हैं, भगवान भी कहता है forcefully किसी को rest कराओ, somebody is not resting. Let's forcefully do that.
2: ज़्यादा ही rest हो गया इस बारी. Not something I enjoy this kind of rest, but that's okay.
1: I know, but Rahul जी, ये जो अभी हमारी off air बात हो रही थी और आपने मुझे बताए बड़े सारे exciting investment opportunities, तो हम लोग बड़े excited हैं सुनने के लिए कि कौन सी investment opportunities हैं इस वक्त.
2: जी एब्सोल्युटली, पहली तो जो जिसके भी हमने कमर्शियल भी सुनी है, जो सोलमार का ये प्रोजेक्ट है विच इज एट मेफील्ड एंड गो कमिंग अप इन बॉर्डर ऑफ ब्रैम्पटन एंड कैलेडन, इस प्रोजेक्ट की जो हाइप थी वो बिल्कुल सही थी, बिकॉज इट्स बीन सेलिंग लाइक हॉट केक्स. और कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जहाँ पर डिमांड काफी होती है पर यूनिट्स नहीं मिल पाते, बट बिकॉज रिमेंबर वी सेड दिस इज अ 2500 होम्स कम्युनिटी, right? So wow. We have lots available. So yahan pe abhi bhi aapko jo town homes hain, these are freehold town homes jo 25 feet wide hain, aur ye shuru hote hain 749,900 se. So
1: very nice.
2: Aapke yahan pe town home shuru hote hain.
1: Wow.
2: Aapke semi detached shuru ho rahe hain 8.5 lakh se, aur jo aapke detached homes hain double car garage starting from 949,900. So 9.5 lakh se wo bhi shuru ho rahe hain. So again, we have lots available guys. Agar aap abhi bhi Brampton Caledon ke border pe, especially you want to live in the Caledon side, jahan pe aapki insurance bhi thodi kam hai, you're still not that far away from Brampton getting onto the highway. And it's a master plan community, right? It's not a something a small site. बच्चे सो घर कम नहीं होते. सो दिस इज where you're looking to buy. Get in touch with our team right away so that we can set up an appointment for you to come visit the site at the sales center, show you where everything is coming, walk you through the entire process, and then based on what you like, your floor plan, the lot, we'll reserve it on the spot. So you don't have to worry about that. So get in touch with our team right away. But Shani ji, काफी दिनों से अभी तो low rise की ही बात चलती रही, you know, because we've been like, you know, that's the demand right now, low rise की जो है.
1: That's right.
2: But now we're focusing back on two condos, and we're focusing back on two downtown core. जो downtown Toronto का core है, वहाँ पे Q Tower करके launch हुआ था project अभी around a year and a half ago, and it was a great success because it's already over, you know, 70% sold ho chuka hai, groundbreaking ho chuki hai project. So you know this is going to get built. Kyunki groundbreaking ho chuki hai, construction shuru ho gayi hai. This is not the project ki ye build hoga, nahi hoga, you know, all that uncertainty is out the door. Theek hai na? Dusri cheez, jab ye launch hua tha, so the pricing was one bedrooms were starting at $789,000. That was the price.
1: Acha.
2: So 789,900 was the pricing of one bedroom when it launched. but yes. we're not in the same market anymore. So now we're bringing you same project, same location, one bedroom,
3: yeah.
2: starting from $589,900.
3: Oh my God.
2: You're
3: wow.
2: getting a $200,000 discount on nice. The price. One bedroom se leke two bedroom tak har ek ke upar aapko $200,000 ka discount milne wala hai. Jo starting price thi uske upar se discount aapka kara ke wo $200,000 aap usme kam karayenge. That's the deal we have secured with the builder. But
3: very nice.
2: These prices include HST. So iske upar aapko HST ka rebate bhi mil sakta hai jo aap qualify honge. So that's additional 13% on this. So remember this, guys. You're saving $200,000 directly off the price, plus up to another $130,000 in HST savings. Free assignment hai, discounted pricing hai, development charges capped hai, aapke jo utilities meter charges hai, they're capped at only $3,000, right to lease and master stay during occupancy, and northeast facing units are going to have unobstructed views of CN Tower and Rogers Center.
3: Oh,
2: this
3: nice.
2: Is the last building
3: Wonderful.
2: That's coming at the space. So, aapko unobstructed views chahiye agar aapko CN Tower ka chahiye ya aapko in the Rogers Center ka chahiye. So, anything above 14th floor, you're looking on the north side or northeast side, that's your direct view of that. And it's going to be unobstructed.
3: Very nice.
2: Nothing's going to get built over there. You have Gardner. That's it. So, this is the project we're bringing, Q Tower, downtown Toronto, core. You're at the lakeshore, south facing, southeast facing, aapko views deti hain lake. So again, we have units available. Get in touch with our team, guys. This is a limited time offer only. Remember, $200,000 directly off the price. Jo cheez 789 ki thi, ab 589 ki hogi. And Shani ji, closing on this project or occupancy is scheduled for 2030. And like I said, groundbreaking ho chuki hai, construction wahan shuru ho chuki hai. Kal raat ko wahan pe coin toss hua tha. That's a, you know, a good luck ceremony that they do. So builder has done that as well. And they're super excited about this. And this is the reason why jo ab inventory bachi hai, guys. The one, that's where you're getting these savings. And
3: amazing.
2: It's all on the paper. So you're going to see it. We're showing you what the starting price was, the discount is, and the new promo price. So get in touch with our team right away. We're bringing this to you. Oh, and other thing, Shalini ji, extended deposit structure.
3: Nice.
2: And it goes all the way to the occupancy till 2030. So get in touch with our team right away, guys. We'll make sure, drop the unit chahiye chahiye, one bedroom home, one plus den home, two bedroom home, yeah, even three bedroom home. We're going to get you the cheapest price possible in downtown core at the very prime location. And who doesn't want the views of CN Tower and Rogers Center? Simple.
3: Arriba. So, very nice. What a location.
2: My direct line is Shawnee G, 647-993-4844. 647-993-4844.
3: 647-993-4844 पर दोस्तों राइट अवे कॉल करें और इस प्रोजेक्ट के बारे में या कोई भी और इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए इन एंड अराउंड द सिटी या आउट ऑफ द सिटी तो आप हैशटैग होम्स पर भरोसा कर सकते हैं राहुल कश्यप ब्रोकर ऑफ रेकर्ड नंबर अगेन 647-993-4844 राहुल जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और कल आपसे मिलने की जो है एक्साइटमेंट है और कल हम लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे फ्रॉम आवर स्टूडियो एज वेल ऑन सोशल मीडिया थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस
2: एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच शालिनी
3: ओके टेक केयर वेल दोस्तों आप जुड़े रहिएगा शालिनी के साथ 4 बजे तक बहुत सारा एक्साइटमेंट बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी नजर करेंगे ड्यूरिंग और आफ्टर द शो डायरेक्ट नंबर टू रीच अस 416-569-7812 416-569-7812 और आज के दिन में बहुत सारी मिठास है क्योंकि आज है वर्ल्ड चॉकलेट डे ग्लोबल फॉरगिवनेस डे इंटरनेशनल पीस एंड लव डे नेशनल डे ऑफ रॉक एंड रोल इसके अलावा नेशनल डेक डे है आप अपने डेक पर बैठ सकते हैं आउटडोर नेशनल डोरा डे है बचपन अगर आपको पता हो गर्ल्स को कि बचपन में एक डोरा की कैरेक्टर से हम खेलते थे इसके अलावा नेशनल फादर डॉटर टेक अ वॉक डे जो फादर्स एंड डॉटर्स हैं साथ वॉक पे जरूर जाइएगा मैक्रोनी खाने का शौक है तो नेशनल मैक्रोनी डे भी है आज और सबसे बड़ी बात सच बोलिए, सच के सिवा कुछ ना बोलिए, टेल द ट्रूथ डे है, और आज तो कुछ ना कुछ बोल ही दीजिए जो आपके दिल में बात है। सच एक बार कड़वा लगता है लेकिन बाद में परेशान नहीं करता। तो ये है आज के स्पेशल डेज, और ये जो डेज हैं आप तक पहुंचाए यश विंडोज एंड डोर्स ने, और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स अगर आप देख रहे हैं रीजनेबल प्राइस में तो यहाँ पर बात कर सकते हैं। खुद ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग है और खुद ही इनकी तरफ से इंस्टॉलेशन होता है, नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पर आपको स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, यू गेट एवरीथिंग टुगेदर। इसके अलावा उनके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। अगर आप फ्रेंचाइज ऑप्शन देख रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अ फास्ट ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600। चलते हैं अगले मेहमान की तरफ, उसके बाद बहुत प्यारा सा गाना आपकी नजर।
0: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada? Yeah.

0: Nation. Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: जी दोस्तों, एक ऐसी टीम जो शुरू से लेकर आखिर तक आपके साथ रहती है. अगर डेट्स का मसला है, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में आप पैसे डाल रहे हैं, आपके जो लोन्स हैं, आपके डेट का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया है आपके सर पर कि आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल हार्डशिप से गुजर रहे हैं, तो आयशा मुनव्वर रिनाउंड इंसॉल्वेंसी काउंसलर हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं छोटी सी मुलाकात के लिए. आयशा जी, वेलकम टू द शो.
3: थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन एयर. सबसे पहले तो मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता दूं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, इसके अलावा जो है बैंक्रप्सी में भी हम हेल्प आउट करते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक्रप्सी जो है वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो, दैट कैन बी ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन. देर आर ऑप्शन जिसमें आपको बैंक्रप्सी नहीं करनी पड़ती और क्रेडिट भी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिव्यू करते हैं, असेस करते हैं, देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी किस चीज़ में है, कौन सी चीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हर पर्सन की ऑप्शन जो है वो सारी नहीं हो सकती. सो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंसेस, डिपेंडिंग ऑन योर एसेट्स एंड एवरीथिंग, वी हैव टू फर्स्ट रिव्यू एंड सी एंड वी हैव टू एडवाइज यू. और उसके बाद फिर हमें वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होती हैं. हम वन एंड वन आपके बिहाफ पर जो है वो बैंक्स के साथ नेगोशिएट करते हैं, सेटल करते हैं आपके लिए मैक्सिमम डेट रिलीफ. और उसमें यह है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको भी लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका घर हो गया, गाड़ियाँ हो गई, बल्कि कारोबार हो गया, इसके अलावा RRSP, RESPs हो गए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेव रहती हैं. और एक ऐसी ऑफर बैंक्स को ऑफर की जाती है जो कि ईजीली वो एक्सेप्ट भी कर लें और आपके एसेट्स को टच ना करें. और उसमें कलेक्शन कॉल्स रुक जाती हैं, इंटरेस्ट रुक जाता है, छोटी पेमेंट्स बन जाती हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड की, तो आप इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं. और इसके अलावा जो है अपॉइंटमेंट्स आर ऑल फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल. व्हाट यू कैन डू, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट मेरे साथ रख सकते हैं. वेरियस लोकेशंस हैं, ईजी टाइमिंग्स हैं हमारी, लाइक फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं. लेट इवनिंग अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वीकेंड की भी अवेलेबल हैं, बट बाय अपॉइंटमेंट ओनली. और उसमें यह है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट पर्सन और राइट पीपल जो है उससे एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत हाथों में अपने फाइनेंसेस दे देते हैं तो कई दफ़ा इजी सिचुएशन जो होती है उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और वो फिर कई दफ़ा जो है बैंक्स जो है उनके अप्रूवल्स जो हैं वो मुश्किल हो जाते हैं. तो इसलिए डोंट फॉरगेट, यू नो द बैंक्स हैज़ टू गिव एन अप्रूवल एंड इट हैज़ टू बी अ फेयर और जो कहते हैं लिजिमेट जो आपकी होनी चाहिए ऑफर, के जिसको वो एक्सेप्ट कर लें और प्रॉब्लम ना बनाएं. बट एनीवेज, फॉर मैक्सिमम डेट रिलीफ यू कैन give us a call. My phone number is 416-428-2165. That is 416-428-2165. Thank you very much.
2: आशीष जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए. 416-428-2165 है नंबर दोस्तों, राइट अवे डायल करें. ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर.
4: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
5: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
6: 970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
5: CJ Rajiv Madan. Thoughts become things. Another Don clean
7: with the Don Ducks. Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna... make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
9: Dawn Platinum, the better grease getter.
10: Sanjeev Puri of Star Life Insurance and Investment Inc. एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. He can shop around for you for the best plans of insurance that will suit your budget and needs. Sanjeev Puri insurance plans में तो माहिर है ही, लेकिन high risk insurance plans के best rates दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को blood pressure, diabetes, heart attack, bypass surgery, liver या kidney के issues हो या insurance company ने आपकी insurance decline की है, तो Sanjeev Puri को आप call करेंगे free quote के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप insurance policy के बहुत high premium pay कर रहे हैं, तो policy review करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232.

0: ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ
1: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ
2: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਡਾਟ ਕਾਮ ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263 ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3 शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस
4: हरवेल दोस्तों अब चलते हैं बॉलीवुड कैलेंडर की तरफ और पहला पन्ना खोलते हैं और आज दो एक से बढ़कर एक लेजेंड्स हैं जिनका बर्थडे है. आज का सेगमेंट है एकदम सुपर स्पेशल और एक लेजेंड जो है वो म्यूजिक की दुनिया से है और दूसरा क्रिकेट के मैदान से है. ईस्ट और वेस्ट व्हाट अ कॉम्बिनेशन. सोलफुल आवाज और काम लीडरशिप का खजाना है. दोनों परफेक्ट कॉम्बो हैं. सबसे पहले बात एक ऐसी आवाज की जो सीधे दिल को छू जाती है. उनका नाम है कैलाश खेर और इनका जो सफर है एकदम स्ट्रगल से भरा हुआ है लेकिन उन्होंने अपनी यूनिक वॉइस और डेडिकेशन से म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है और लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए. बिजनेस फेलियर तक फेस किया और स्पिरिचुअल एंड सूफिज्म से ये डीपली जुड़े हुए हैं कैलाश खेर और इनकी वॉइस एकदम रॉ एंड नेचुरल है. कोई आर्टिफिशियल स्टाइल नहीं है और बिगेस्ट जो है इंडिपेंडेंट हिट बना ये जो अगला गाना हम प्ले करने जा रहे हैं तेरी दीवानी. आपकी नजर करते हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर.
5: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी.

0: टाइम जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाए हर घड़ी। आपका विचार और हमारा अंदाज। शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी।
2: मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3। और वेल दोस्तों, आज का दिन जैसा बताया, बहुत सारा स्वीट दिन है, चॉकलेटी डे है, टेस्टी डे है, मैक्रोनी डे है, यानी आप खाओ खाओ और खूब सारा खाओ, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ में एक क्वेश्चन मार्क लगता है या कई सारे क्वेश्चन मार्क लगते हैं, तो भाई आप कुछ भी खाते हैं, आपको खाने का भी मन नहीं करता, ज़िंदगी इंजॉय करने का भी मन नहीं करता, नज़रिया बदल जाता है टुवर्ड्स योर लाइफ। तो आइए आपके नज़रिए को थोड़ा पॉजिटिव करते हैं, और हमारे साथ 1, 2, 3, 4 साल नहीं बल्कि 9 जनरेशन के अनुभव के साथ जुड़ने जा रहे हैं वन एंड ओनली चमत्कारी नाम है हमारी कम्युनिटी का, आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी। गुरुजी नमस्कार, हाउ आर यू?
3: नमस्ते नमस्ते जी, मैं बहुत अच्छा है, ऊपर वाला का आशीर्वाद से। आप कैसा है जी?
2: बिल्कुल ठीक ठाक गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और हमारे लिसनर्स भी जब आपसे मिलने जाते हैं तो एक आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनालिटी है, आपसे मिलना जुलना लोगों को वार्म्थ है, इतनी केयर आप देते हैं कम्युनिटी को, सो दे आर ऑल सो हैप्पी टू मीट यू।
3: थैंक यू जी। ये क्या जी है, हमको भगवान दे दिया था ये सफा, भगवान दे दिया था आशीर्वाद, ये भगवान आशीर्वाद से ये नॉलेज सारा को हम लेना है, देना है, क्योंकि हमारा पास क्या, हमारा पास भगवान से आता है नॉलेज, ये सारा को 10 लोगों को हम क्या करना है, देना है, दे तो वो भी अच्छा होता है। मैं 9 जनरेशन से वैद्य है, आज कल से नहीं है, मेरा पापा या मैं, मेरा पापा, मेरा दादा, मेरा परदादा, वैसा वो जनरेशन से मेरे को ये नॉलेज आता है, ये वैद्य का काम आ जाता है। इसमें बहुत लोगों को देख के अनुभव भी मैं हमारा पास होता है, एक दो लोग को नहीं, बहुत बहुत लोगों को देख के, वो कोई क्या क्या प्रॉब्लम है, कोई का बीमार है, ये बीमारी को लिए, एक बीमारी के लिए 10 तरफ अलग अलग जड़ी बूटिया से, 100 जड़ी बूटिया, 1000 जड़ी बूटिया से हम बनाता है इलाज।
2: अच्छा ठीक है,
3: उससे लोगों को इलाज होता है सारा बीमार के लिए। ये बीमार आता है बॉडी को अंदर एनर्जी लेवल्स और इम्यूनिटी सिस्टम्स एंड खुद एंटीबायोटिक और हमारा वाता पित्त कफा रहता है, ये 3 कारण से सारा बीमार आ जाता है। उसमें ज्यादा लोगों को ये जनरली बीमार है, आर्थराइटिस अभी ज्यादा हो गया ये कैनेडा में, इंडिया में काम करने के टाइम में उस टाइम में कम है, इधर ज्यादा होता है ये आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस के कारण से जॉइंट में दर्द आता है, कमर में दर्द आता है, बैक में दर्द आता है, शोल्डर में दर्द आता है,
2: बिल्कुल,
3: और हमारा वो लोअर बैक पेन जी होता है, वैसा हर जॉइंट में, हाथ में भी हो जाता है, वो इसके लिए हमारा बहुत अच्छा इलाज है। और शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर होता है बहुत लोगों को, उसके लिए नेक पेन के लिए वैसा, और स्किन डिसीज के लिए, शुगर के लिए, प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, किडनी के इश्यूज के लिए, किडनी में स्टोन्स होता है, और सब लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन होता है, यूरिन में जल आ जाता है, यूरिन ड्रॉप हो जाता है, बहुत बर्निंग सर्फ से आता है उसके लिए, और उसको यूरिन नहीं होता है और बार बार हो जाता है, फुल पूरा नहीं हो जाता, काले नहीं हो जाता, उसके लिए भी प्रोस्टेट हो जाता है, उसके लिए भी वैसा बहुत बहुत बहुत प्रॉब्लम के लिए हमारा पास इलाज है, भगवान आशीर्वाद से लिए ठीक होता है। हमारा कितना लोग आ गया जी, बहुत लोग आ गया था हमारा शो सुन के, आपको थैंक्स बता रहा है, मेरे को भी थैंक्स बता रहा है, भगवान को आशीर्वाद भी उसको मिलता है, वैसे बहुत लोगों को ठीक हो गया था।
2: Wonderful गुरुजी। तो हम लिसनर्स को बता दें, गुरुजी 2 लोकेशन से सर्व करते हैं, स्कारब्रो एंड ब्रैम्पटन, और स्कारब्रो में मंडे ट्यूसडे वेंसडे रहते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन ब्रैम्पटन से सर्व करते हैं। नंबर बहुत आसान सा सीधा सा है, 437-438, यानी 437-438 नाउ 33-99, वेरी इजी टू रिमेंबर, 437-438 3399 Ayurveda and Herbs Guruji and Miracle Guruji of our community. Thank you so much, Guruji. Thanks a lot for joining us. आपको बता दें एक स्पेशल एयरफेयर आया है देओल ट्रैवल की तरफ से एडमिंटन टू अमृतसर. स्पेशल एयरफेयर है वन वे सितंबर के महीने में स्टार्टिंग फ्रॉम $1,070 और राउंड ट्रिप लगा है सितंबर टू अक्टूबर स्टार्टिंग फ्रॉम $1,850. दो लोकेशन टू सर्व यू एटोबिको एंड ब्रैम्पटन. देओल ट्रैवल का नंबर 9055885100 एंड 5885800 and 5884200. और आज जो है बर्थडे मना रहे हैं कैलाश खेर और कैलाश खेर के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी का भी आज है बर्थडे और एक बहुत प्यारा सा गाना है धोनी द अनटोल्ड स्टोरी. दिस वाज द फिल्म और इसी फिल्म से लिया गया एक बहुत प्यारा सा गाना. बहुत जल्दी आपकी नजर करते हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. ये एक ऐसा नाम है जो क्रिकेट ही नहीं बल्कि लीडरशिप का भी जीता जागता सिंबल है और इनका सफर एक बहुत छोटे से शहर रांची से शुरू हुआ और उन्होंने अपनी मेहनत और अपने काम नेचर से इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया. MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से लिया गया बहुत प्यारा सा गीत. बहुत जल्दी आपकी नजर करते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे मस्ती की रेलगाड़ी पर. स्टे ट्यून्ड.
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम। हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s। मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज। ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844.
3: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
4: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
3: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड।
4: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी
5: 416-922-5263
6: Sean Express, गानों की स्वीट डिश।

0: धोनी द अनटोल्ड स्टोरी सन 2016 की फिल्म से लिया गया बहुत प्यारा सा गाना आपकी नजर किया, क्योंकि आज बर्थडे मना रहे हैं वन एंड ओनली क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी। और ये जो है बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी, नीरज पांडे का डायरेक्शन था एंड दिस वाज बेस्ड ऑन हिज लाइफ। और कहाँ से इन्होंने शुरुआत करी, किस लेवल पर उन्होंने शुरुआत की और किस लेवल पर पहुंचे और किस लेवल पर देश को लेकर गए, अ बिग सैल्यूट टू सच अ बिग हस्ती जो आज अपना बर्थडे मना रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर सेगमेंट। और अब दोस्तों हमारे साथ अगले मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, और जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो उनकी फिल्म में भी देखा था ना कि माँ बाप को लगता नहीं था कि हमारा बच्चा इतना बड़ा बन जाएगा, इतना कुछ डिफरेंट करेगा। तो ऐसे ही हमारे जहन में बहुत सारे यू नो प्लान्स होते हैं हमारे बच्चों के लिए कि क्या हमारा बच्चा बड़े होकर ये कर सकता है। हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो अनमैच्ड होती हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा बच्चा कहाँ तक, हमारे लिए हमेशा बच्चा रहता है, लेकिन आपके लिए तो बच्चा है, लेकिन आप चाहते हैं कि बड़े होकर आपका नाम करें। तो उसको यू नो मैथ स्किल्स ऐसी दें कि बच्चे की फाउंडेशन जो है पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाए। मैथ में अगर आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, इफ़ योर किड इज़ लुकिंग फॉर बेटर ग्रेड्स, स्ट्रांग कॉन्फिडेंस और इसके साथ साथ स्टेम प्रोग्राम में सक्सेस हासिल करना चाहता है, तो हमारे साथ एक नाम जुड़ने जा रहा है और इनका नाम है अनिल कुमार खंडेलवाल जी। रिनाउंड मैथ ट्यूटर हैं, 6 books के ऑथर हैं और YouTube चैनल पर 18,000 से ज़्यादा मैथ के वीडियोस हैं, 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, बच्चों को इन गर्मियों की छुट्टियों में इंजॉय करने दें बट एट द सेम टाइम पढ़ाई भी कराएं थोड़ी बहुत, वो बड़ी ज़रूरी है। और नंबर नोट करें 6479792791। अनिल कुमार जी वेरी वार्म वेलकम, हाउ आर यू?
1: वेरी गुड एंड थैंक्स अ लॉट। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये समय आ गया है हम अपने बच्चों को थोड़ा सा डायरेक्शन अगर मैथ्स में दे दें तो वो भी धोनी की तरह छक्के मार सकते हैं।
0: तो क्या बात है,
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है। मेरे आपने जैसे आपने बताया मेरे इतने वीडियोज हैं और इतने फॉलोअर्स, और ये इसीलिए है क्योंकि हम करीब 10 countries के बच्चों को पढ़ाते हैं। हमें पता है बच्चों को क्या सीखना चाहिए यूनिवर्सिटी में सक्सेस लाने के लिए। हमारे बच्चों ने वाटरलू के एग्जाम में 4th position पाई है और जो हमारा ये ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा अवार्ड है, यूनिक अवार्ड है, $125,000 का है और वो भी उनको मिला है। एडमिशन टू एनी यूनिवर्सिटी एनी कोर्स विद स्कॉलरशिप और $125,000 का स्कॉलरशिप, ये कोई मजाक था। और वो भी उस बच्चे को मिला है जिसको एक टाइम हेल्प की जरूरत थी, वो आज अच्छा निकल के गया है। जी हाँ,
0: क्या बात है अनिल कुमार जी। एक बार नंबर आपका फिर अनाउंस कर दूं दोस्तों, रिनाउंड मैथ ट्यूटर अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बड़े एक्साइटिंग इनके जो प्लान्स हैं, बहुत आसानी के साथ आपका बच्चा पढ़ सकता है इन समर वेकेशंस में। 6479792791 जल्द से जल्द कॉल करें इस नंबर को। और ऑनलाइन 1-to-1 classes होती हैं 6479792791। जी अनिल जी,
1: तो आप जरूर कॉल करें जल्दी से जल्दी। 2 महीने हैं, पूरा कोर्स हम कंप्लीट करा सकते हैं। सितंबर में जब स्कूल शुरू होगा तो बच्चा सबसे आगे रहेगा और आगे भी आगे ही रहेगा। तो ये मौका ना छोड़ें, आप प्लीज कॉल करें इस नंबर को 6479792791। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं मगर अपने जितने भी श्रोता है उनको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी है, तो आप प्लीज नंबर पे कॉल करें। जी हाँ,
0: क्या बात है। और अलग अलग कोर्सेज के लिए सपोर्ट अवेलेबल है दोस्तों, और जैसे मैंने कहा ये एक स्पेशल 1-to-1 classes होंगी अनिल जी। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जब यू नो ग्रुप में बच्चे पढ़ते हैं तो कभी कभी यू नो समझ नहीं आ पाता कि कौन से बच्चे में क्या इशू है, किस बच्चे को कहाँ मदद चाहिए। तो मेरे ख्याल से जब 1-to-1 classes होती हैं तो आपका डायरेक्ट इंट्रैक्शन रहता होगा बच्चों के साथ।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। IB प्रोग्राम, AP प्रोग्राम या कोई भी एडवांस स्टेम प्रोग्राम्स में बच्चे हैं उनको हम बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। और जूनियर बच्चों को भी अगर आप भेजना चाहें तो बहुत अच्छा है, अभी से उनकी एक फाउंडेशन बहुत अच्छी बन जाती है आगे आने वाले वक्त के लिए, तो प्लीज कंसिडर करें, ये बहुत अच्छा मौका है, टेंशन फ्री बच्चों को पढ़ाएं।
0: वंडरफुल। सो अनिल कुमार जी का नंबर 6479792791, 6479792791। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।
1: थैंक यू।
0: जी और वेल दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर CMRFM 101.3 आप हैं शालिनी के साथ। कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी के बारे में बता दें, लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कनाडा वाइड। घर या बिजनेस के लिए आप ले सकते हैं पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग, और फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड। कस्टम कैनोपी, सनरूम, कुछ भी आप बना सकते हैं। 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन है एड्रेस। नंबर 416-831-4790, 416-831-4790। और यश विंडोज एंड डोर्स, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, खुद ही इनकी प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग, और इनके ही एक्सपर्ट इंस्टॉलर्स आपकी प्रॉपर्टी पर जाकर इंस्टॉल करते हैं। गुड लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, स्टाइल, यू गेट एवरीथिंग टुगेदर। प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करती है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी, दे डू हैव दैट एज वेल फॉर यू। नंबर 416-732-3600, 416-732-3600। सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada? Yeah.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest fee installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Hashtag Holmes and Rahul Kashyap आपके लिए लेकर आए हैं Brampton and Caledon border पर at Mayfield and Gore, freehold towns from mid 700s, semis from mid 800s and detached homes from mid 900s. Master plan community of 2500 homes with cricket pitch, tennis, basketball and pickleball courts, dog park and kids splash pads as neighborhood amenities. Only 10% deposit over 365 days and closing later 2027 to early 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844. 647-993-4844.
3: Sean Express, yani aap aur hum. Aur is gaane mein hai kuch dum.
2: चलिए दोस्तों, आपको छोड़े जाती हूँ बहुत सारी गुड विशेस के साथ. एंजॉय कीजिए रेस्ट ऑफ द डे. अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें और कल मुलाकात होती है फिर से 3 से 4 मस्ती की रेलगाड़ी पर. शो के बाद हमारा नंबर 416-569-7812, 416-569-7812. और आज का आखिरी गाना आपकी नजर करेंगे, बहुत प्यारा गाना है. मैं चंद लाइनें गुनगुनाती हूँ और उसके बाद फिल्म ब्रह्मास्त्र के इस गाने की तरफ लिए चलूंगी आपको. और गाना कुछ इस तरह से है.

0: अच्छी लाइफ के लिए एक सक्सेसफुल करियर होना बहुत जरूरी है और उसके लिए रूहानी कॉलेज ऑफ हेल्थ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ से सिर्फ एक साल का RMT हाइब्रिड कोर्स करने पर आप $15,000 पर मंथ तक कमा सकते हो। एलिजिबिलिटी 12th पास ओनली। इसके अलावा एक साल की ऑस्टियोपैथिक मैनुअल प्रैक्टिस, एक्यूपंक्चर एंड नेचुरल हीलिंग साइंसेज का कोर्स भी है जिसे करके $300 पर आवर तक आप कमा सकते हो। कोर्सेज तो और भी बहुत है यहाँ, बस आप अपना करियर बनाने का करो पक्का इरादा। विजिट 239 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट यूनिट 21 ब्रैम्पटन और कॉल 905-731-2555। विजिट ruhanicollege.com।
1: अरे अरे अरे अरे।

0: हाय हाय हाय, रुक जाओ ना जी, ए ऐसी क्या जल्दी चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई, ए रुक जाओ।
1: To advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. your prime drive time show, call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
1: अब फायदा उठाएं जून के हॉट ट्रेड्स का विद अमित खुराना। 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%। साथ ही मिले $5,100 तक का हॉट और कैश बैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500। है ना आइसिंग ऑन द टॉप। कॉल अमित खुराना एट 6473412785, 6473412785, और विजिट amitkhurana.com।
4: Another Don clean with the Don Dux.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
8: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
9: मगर क्यों, पिताजी नहीं माने क्या?
8: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो, ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
9: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
1: हाँ, सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR at 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

0: एंड एज प्रॉमिस्ड इट्स ट्यूसडे 6:15 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज ओबेरॉय जी. मुझे पता है 6:15 बजने में एक मिनट है, अभी कुछ सेकंड्स हैं, पर क्योंकि अनुज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो मैंने कहा उन्हें मैं आपसे वापस नमस्कार तो करा ही देती हूँ. अनुज जी वेलकम.
1: थैंक यू स्वाति जी एंड सब सारे ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार. और आज स्वाति जी बात करेंगे कि हमारी डेली लाइफ में न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है.
0: मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे क्योंकि ये सवाल अक्सर आता है कि मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था और बहुत लोग पूछते हैं कि नंबर्स तो हमारे जो हैं सो हैं, उनको हम बदल नहीं सकते, पर वो कैसे हम उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में वो कैसे हम उन्हें यूज़ करें अपने बेहतरी के लिए, और अगर वो फिट नहीं बैठ रहे तो उन्हें फिट कैसे बैठाया जाए, तो वो आप ही की वो साइंस है, आप ही की वो एक्सपर्टीज है, तो उस पर सजेशन ज़रूर दें. पर उससे पहले मैं स्टूडियो का नंबर ज़रूर बता दूं, जो भी लोग अपने सवाल पूछना चाहें, क्योंकि बहुत सारे कई बार ऐसे जवाब होते हैं, कई बार ऐसे सवाल होते हैं जो आपको लगता है ये हम पूछना चाह रहे हैं या इस जवाब से हम संतुष्ट नहीं, उन पर काउंटर क्वेश्चन आपके निकल के आ सकते हैं, तो ध्यान से सुने. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, स्टूडियो का नंबर 4165930055. इस वक्त अनुज जी हमारे साथ हैं, नंबर्स डू वंडर सेगमेंट है ये, और आपके सवाल लेने के लिए हम तत्पर हैं. जी अनुज जी.
1: जी जैसा मैं कह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स तीन ही जगह पे आती हैं. सबसे पहला है करियर, दूसरी प्रॉब्लम का एरिया होता है हेल्थ, और तीसरा होता है रिलेशनशिप. तो इन्हीं तीनों पहलू को अगर आप देखेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स, बच्चे हो गए तो रिलेशनशिप में आ गए, फाइनेंशियल क्राइसिस है या फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सब एक करियर के ऊपर आते हैं. बट बेसिक तौर पे प्रॉब्लम जो आती है वो इन्हीं तीन सेक्टर्स में आती है, एंड न्यूमरोलॉजी इन तीनों सेक्टर्स को बखूबी कवर करता है.
0: अच्छा,
1: सबसे पहले बात करें करियर की, तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ्स देखिए, आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या स्ट्रेंथ्स आ रही हैं, उसी हिसाब से अगर अपना करियर चूज करेंगे, जिस काम में आपको मजा आता हो वो काम काम नहीं लगता, आपका शौक बन जाता है, आपकी आदत बन जाती है.
0: हाँ.
1: तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से आप जानिए. तो अगर आप एक बार अपनी स्ट्रेंथ से वाकिफ हो गए, उसी के ऊपर काम किया, तो फिर मजा ही कुछ और आएगा काम करने का.
0: बिल्कुल ठीक बात है, चस्का लग जाता है अगर आप अपनी ही पसंद का काम कर रहे हैं, और आपकी पसंद कहाँ होती है, जहाँ जनरली आपकी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको नेचुरल है आप वहाँ पर.
1: बिल्कुल है मैम. सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए कुछ नंबर्स हैं, उस नंबर्स के एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके साथ में कंपैटिबल है या वो आपकी स्ट्रेंथ है. अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे ही काम कर रहे हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली बेटर मिलेंगे आपको.
0: बिल्कुल ठीक.
1: और अगर कहीं आप एंटी नंबर्स पे आ गए या एंटी एलिमेंट्स पे चले गए, जैसे कि आप वाटर एलिमेंट वाले हैं और आप काम फायर का कर रहे हैं, तो आग भी बुझ जाएगी, पानी भी उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा,
0: हाँ,
1: तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी.
0: हाँ.
1: या अगर आप अर्थ एलिमेंट वाले या वुड एलिमेंट वाले हैं और काम अगेन फायर का कर रहे हैं या वाटर का कर रहे हैं, तो वाटर तो वुड एब्जॉर्ब कर लेती है ना, अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेगी. तो इसी तरह से हमको देखना होता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ से क्या स्ट्रेंथ निकल के आती है. मैं आपको फिल्मी नुक्कड़ पे है तो एक फिल्मी एग्जाम्पल देता हूँ,
0: प्लीज
1: देखिए. बात करते हैं नंबर टू की, ठीक है. पिछली बार मैंने साक्षी का एक एग्जाम्पल दिया था आपको.
0: हाँ जी.
1: मगर देखिए आप एक्टिंग जो है वो नंबर टू को बहुत ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि नंबर टू वाला वैसे ही डेलिकेट होता है, एक आर्टिस्टिक टच होता है उसके अंदर, और एक्टिंग दिखती तो है नहीं हमें, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है.
0: जी.
1: राइट. आप कितने सुपरस्टार्स देखिए, इंडिया के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना 29th बॉर्न है. उसके बाद में बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, द लेजेंडरी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दिलीप कुमार, ये सारे के सारे नंबर टू वाले. नसीरुद्दीन शाह ब्रिलियंट एक्टर, बॉर्न 20th July. तो आप देखिए कितने सूटेबल करियर अपने लिए लेके आए हैं. धीरू भाई अंबानी की बात करते हैं, मुकेश अंबानी की बात करते हैं, ये सब नंबर वन वाले हैं.
0: अच्छा.
1: तो बॉर्न लीडर्स हैं.
0: राइट.
1: एलन मस्क बॉर्न लीडर्स हैं, तो इनको अपना बिजनेस में वैसे उनकी स्ट्रेंथ रहेगी.
0: राइट.
1: राइट. तो इसी तरह से हम हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आपका करियर पाथ क्या होना चाहिए, आपको जॉब सूट करती है, आपको बिजनेस सूट करता है, और बिजनेस सूट करता है तो किस तरह का बिजनेस सूट करता है.
0: Okay.
1: Right? हम उस डेप्थ तक जा सकते हैं, एंड कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान.
0: कई बार हमें लाइफ में कंफ्यूजन होता है, चले बिजनेस करना है, किस चीज का करें, हमें क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा.
1: मैम तो आपके शो पे कितनी
0: बार हमने इस बात का जवाब दिया है
1: कि जी. मुझे लिए कौन सा बिजनेस सूटेबल रहेगा.
0: जी.
1: राइट. हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है. और अब बात करते हैं नंबर टू प्रॉब्लम, विच इज कंपैटिबिलिटी और रिलेशनशिप.
0: जी.
1: अक्सर घर में बर्तन खड़कते हुए सुनाई देते हैं
0: बहुत ज्यादा
1: और आजकल के टाइम में जहाँ पर टॉलरेंस लेवल्स आर सो लो
0: एंड पेशेंस इज वेरी
1: लो अगेन सो यू नो आजकल अनफॉर्चुनेटली डाइवोर्स रेट या सेपरेशन रेट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं
0: बिल्कुल ठीक बात है
1: यहाँ पर भी न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है स्वाति जी मैं आपसे एक बात पूछता हूँ क्या आप हफ्ते में 7 दिन राजमा चावल या दाल मखनी खा सकती हैं
0: नहीं
1: खा सकती तो देखिए दो लोगों में भी वैसे ही कंपैटिबिलिटी है व्हाट आर दे ब्रिंगिंग ऑन द प्लेट दैट इज इम्पोर्टेंट
0: तो रोज कुछ रोज राजमा चावल प्लेट पे ना लाएं
1: देखिए एक और बात होती है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं सिमिलर आदमी दे विल गो इन द फ्लो राइट मगर कहीं कहीं यहाँ तक तो बात ठीक है कहीं कहीं एंटी नंबर्स आ जाते हैं अगेन कंपैटिबिलिटी जैसे 1 and 8 है राइट ये बिल्कुल जिसको बोले एक फोटो की दो या कॉइन की दो साइड्स हैं तो ये तो कभी मीट नहीं करेंगे तो हमको ऐसे रिलेशनशिप्स को अवॉइड करना चाहिए 2 and 8 है उसको अवॉइड करना चाहिए 4, 9 हो गया तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपस में कंपैटिबल नहीं होते हैं
0: अच्छा ये एक तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि कौन से नंबर्स आपस में कंपैटिबल नहीं है जिससे कि अगर आगे हम उनसे दोस्ती कर रहे हैं या उनसे कोई रिलेशनशिप हमारी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है और हम परेशान हैं कि क्यों नहीं ठीक है तो हमें पता हो लेकिन अगर हमारी रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और वो कंपैटिबल नंबर्स की नहीं है तब आप क्या सजेस्ट करते हैं
1: मैम बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जैसे हर कोई घड़ी पहनता है
0: हाँ।
1: एक घड़ी पहनने से आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकती है
0: अरे वाह
1: आपकी बेड की डायरेक्शन चेंज करने से अपने घर के मिरर एडजस्ट करने से ऐसी छोटी छोटी चीजों से आप घर अपनी रिलेशनशिप तीनों ही सेक्टर रिलेशनशिप की बात नहीं करता हूँ तीनों ही सेक्टर्स को आप बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं
0: चले
1: कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत आसान तरीके हैं एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स
0: मुझे लग रहा है कि रॉकेट साइंस नहीं है ये कह रहे हैं क्योंकि इनके लिए ये रॉकेट साइंस नहीं है पर हमें तो समझना पड़ेगा जरूर से और उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें इस पे हम और बात कर सकते हैं आप भी अपना कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं जितनी हमने अभी बात करी है उससे रिलेटेड या कोई और सवाल स्टूडियो का नंबर 4165930055 एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट के हमारे साथ बैठे हैं न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट मिस्टर अनुज ओबरॉय जी हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट तो नंबर टू वंडर सेगमेंट में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं मैं फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक विल बी बैक विद मोर

0: ऑल राइट, आप हैं फिल्मी नुक्कड़ पर CMRO 101.3 FM है ये, और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज ओबेरॉय जी इन द सेगमेंट नंबर्स टू वंडर्स. हम बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, बहुत से नहीं भी रखते हैं, पर अनुज जी कहते हैं कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं कि मैं आपको बता सकता हूं कि ये वर्क करता है और ज़रूर करता है. आप अपने सवाल खुल के इनसे पूछ सकते हैं, ही इज़ हियर टू आंसर ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आप अगर डेट ऑफ बर्थ या कोई और सवाल के साथ पूछते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हुए, तो भी वो आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं. मैं बात बहुत सारी कर रही हूँ, आज हम रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, पर बीच बीच में आपके क्वेश्चंस मैं लेती रहूंगी. तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं
1: प्लीज.
0: चलें, स्टूडियो का नंबर 4165930055. हियर वी गो. हेलो जी.
2: हाय.
0: हाय. यस मैम, आपका क्वेश्चन क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ?
2: My daughter is 2004 born. Her date of birth is 28th July 2004. Regarding her job, she just graduated.
0: Okay. So, she just graduated. आप उसकी job लगेगी या नहीं लगेगी के लिए परेशान हैं?
2: Yes.
0: अच्छा.
1: मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज नॉट, अभी मैं बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है. शी इज अ 1 and 6 कॉम्बिनेशन.
2: ओके.
1: दिस इज अ ग्रेट ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर बिजनेस.
2: और बिजनेस?
1: बिल्कुल मैम, इनको बिजनेस करना चाहिए, ये जॉब के लिए नहीं बने. शी विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल डूइंग अ जॉब.
2: सो बट शी ग्रेजुएटेड.
1: That's fine, ma'am. Let her gain some experience, but ultimately train her mind to go into business stream.
2: And okay, all right.
1: Ma'am, ये थोड़ा सा अभी slow time है इसके लिए. 27 would be the arguably one of the best years of her life.
2: Okay.
1: She, don't worry about her. She's a blessed one.
2: Yeah. Thank you.
1: You're welcome, ma'am.
0: All right.
2: Thank you, Swati.
0: Thank you, जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो जी, आप नाम बताना चाहें तो नाम बताएं, वरना डेट ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन.
3: राइट, तो माय क्वेश्चन वाज फॉर कंपैटिबिलिटी, मुझे उसमें इंटरेस्ट था. माय नंबर इज 19, सो 1 होता है. हाउस का नंबर 18 है, तो इट्स अ 9. हाउ इज द कंपैटिबिलिटी?
1: सर, 1 एंड 9 आर आर्ग्युएबली इनसेपरेबल. इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस इन न्यूमरोलॉजी. बट थोड़े से एंगर इश्यूज आते हैं यहाँ पर. कंपैटिबिलिटी वाइज, यू नो, 1 and 9 आई से आर एब्सोल्युटली, देयर इज नो वे एनीथिंग कैन गो रॉन्ग बिटवीन देम. बट यस, ईगो क्लैशेस एंड थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा होता है दोनों में.
3: राइट, आई एग्री विद यू, बट कंपैटिबिलिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर मी फ्रॉम द टाइम आई एम मैरिड.
1: See, sir, again, it is based, the problem is not that your think processes don't match, it is just that clash of egos is there. ओके, सो थोड़ा सा गुस्से पे काबू रखिए सर, अदरवाइज यू नो ऑफ एयर यू कुड कॉन्टैक्ट विद मी, आई विल गिव यू द फुल कंपैटिबिलिटी चार्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू. मे बी यू नो दिस इज जस्ट द बर्थ नंबर, राइट? मे बी द डेस्टिनी नंबर एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रिड इज नॉट मैचिंग.
3: मे बी. ओके, थैंक यू.
1: ओके, थैंक यू सर.
0: ओके, थैंक यू सर. नेक्स्ट कॉलर. हेलो जी. हेलो, कैन यू हियर अस? हेलो, मुझे लग रहा है हमें उनकी जी आई फाइनली हुआ सा. जी, आपका सवाल और डेट ऑफ बर्थ, और अगर नाम बताना चाहें तो नाम बता सकते हैं.
4: डेट ऑफ बर्थ मेरा है 1983 दिसंबर 27.
0: जी,
4: मुझे मैं करियर के बारे में कुछ बता सकते हैं घर की? मतलब आई एम 42 इयर्स ओल्ड एंड आई एम मैरिड एंड आई हैव अ डॉटर, सो मुझे थोड़ा करियर का पूछना था, अगर बता सकते हैं जी.
1: सो व्हाट डू यू डू राइट नाउ?
4: Right now, I'm just at home looking after my daughter. And कुछ काम वगैरह अभी कुछ हो नहीं रहा, तो मैं सोच रही हूँ कुछ अपना बिजनेस का मैं सोच रही थी करने का इन फ्यूचर, डे केयर में या तो कुछ.
1: बिल्कुल कर सकती है मैम. यू नो योर कॉम्बिनेशन सेम लाइक सलमान खान, सक्सेस इज गारंटीड, बट थोड़ा सा आपको गुस्से पे ईगो पे काबू रखिए एंड यू नो कॉन्ट्रोवर्सीज में पड़े रहेंगे आप. सो द बेस्ट एडवाइस फॉर यू इज Speak only when required.
4: Yeah, that's right.
1: तो थोड़ा सा ना वहाँ पर इश्यू आ जाता है कि unnecessarily थोड़ी सी controversies में पड़े रहते हैं.
4: Okay.
1: So you can do well. There's no doubt about it.
4: Okay.
1: थैंक यू।
0: चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। वैसे स्टूडियो का नंबर मैं फिर से बता दूं, 4165930055 फॉर योर क्वेश्चंस। हेलो जी, हेलो। हाँ हाँ जी, अपना सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ एंड नाम बताना चाहें तो नाम भी शेयर करें।
5: डेट ऑफ बर्थ
0: 29th नवंबर 1968।
5: हेल्थ के बारे में पूछना था।
0: अच्छा, वैसे मैं जितने अनुज जी कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं आपका मेरे सामने, मैं तब तक ये ज़रूर सबसे कहना चाहूँगी कि आज हम बात कर रहे हैं रिलेशन कंपैटिबिलिटी की, बट सवाल ज़रूरी नहीं है उससे रिलेटेड हो। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर 4165930055।
1: मैम, लास्ट ईयर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है आपकी हेल्थ, बट आई थिंक दिस ईयर से आपको थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखी होगी।
5: आगे
1: ठीक है मैम, थोड़ा सा पानी पीजिए खूब।
5: यू आर राइट, मैं पानी बहुत कम पीती हूँ क्योंकि मेरे को ठंडी ज्यादा लगती है।
1: मैम ये भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देती है। बस पानी पीजिए मैम, थोड़ा एक्टिव रहिए, एंड यू नो एज सच कोई मेजर इशू नहीं है आपकी इसमें, बट यस थोड़ा सा ऊपर नीचे छोटे छोटे जो होती है ना चीजें वो रहती हैं आपके साथ में। थोड़ा बाहर निकलिए घूमिए फिरिए, अच्छा है आपके लिए टाइम।
5: नहीं, पूरा दिन एक्टिव रहती है जॉब के साथ तो घर के साथ।
1: बस एक्टिव रहिए मैम, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू।
5: थैंक यू।
0: चलिए और एक कॉलर ले लेते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो जी।
6: फरवरी 13, 1984
0: एंड क्वेश्चन इज अबाउट हेल्थ।
6: फरवरी 13, 1984
0: सो इट्स फरवरी राइट?
6: यस 13, 1-3, 1-3, 1984
0: एंड यू आर आस्किंग अबाउट हेल्थ।
6: हेल्थ एंड यू नो लॉट ऑफ दैट।
0: लॉट ऑफ व्हाट?
6: A lot of debts on it, so how I can clear those.
0: Okay.
1: Sir, see, you have a 4 in your grid, birth number 4. Thoda sa na life mein stability nahi rahegi. Ups and downs rahenge. But you have that knack of making money, you can bounce back definitely.
6: Okay.
1: Okay. Health is okay. Health is not a concern, sir. Thoda... खोपड़ी में बहुत ज्यादा तेज चलती है।
0: ये भी परेशानी होती है।
1: राइट, वेरी वेरी लॉजिकल पर्सन, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिटरमिंड, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा, एज आई टोल्ड द प्रीवियस कॉलर एज वेल, थोड़ा जबान पे काबू रखिए सर। राइट, 4 जब आता है ना तो थोड़ा कंट्रोल कम हो जाता है टंग पे, तो अक्सर सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग हो जाता है विच यू अवॉइड।
0: सुंदर सुंदर।
6: Okay. How to control that?
1: Control your anger. No, the best thing is drink more water as much as you can. Thanda pani pije, dimag bhi thanda rahega.
6: Okay. Thank you.
0: Chale. Next caller. Hello, ji.
7: Hello.
0: Ji, aapka question and date of birth and naam batana chahe to naam bataye.
7: 1989, 17 January.
0: 17 January. Okay.
7: Yep.
0: And question?
7: Question is, how's my year looking for 2027? And I'm trying to have a second child, so is there any chance?
1: Sorry, what are you trying to do? What are you trying to do in
7: 20? Trying to have a baby, second child, and okay. How's 2027 working for, looking for me?
1: Sir, you are right now in thoda sa anti phase. One. Right now your personal year is 1 with a driver birth number 8, thoda sa anti ho jata hai, and next year arguably would be a bit tough, but that doesn't stop you from having a second child. That is not, you know, things are not gelling together, but yes, definitely you just take extra care next year, especially regarding your health.
7: Thank you very much.
1: You're very welcome.
0: All right, next question. Hello ji.
8: Hello?
0: Yes, what's your date of birth and question and name, if
8: March,
0: you can share?
8: March 9th, 1982.
0: March 9th, 1982. And your question?
8: My question is, I'm working from last 15 years, but my job mein na mera growth ho raha hai and I'm not happy where I'm working right now. I'm thinking to go into the business, but right now, looking at the conditions outside, pata nahi chal raha ki, should I quit the job and start the business or should I continue the job?
1: Not at all, sir. Not at all. Not this time.
8: It's not the right time to start.
1: No, sir. No. Just take extra care of yourself this time.
8: Okay, so health is more important right
1: yes,
8: now.
1: Yes, right now. I'm sorry, mere muh mein sabse gandi baat wo matlab may God say ki my word never comes true, but chances of injury is more this year.
8: Oh, okay.
1: Just take extra care of yourself. Just do whatever you're doing, even if you're not happy. Leave your ego aside and just keep working where you are. No changes, no nothing.
8: Okay, so no changes required.
1: No, nothing right now. No, not for this year.
8: Okay, so just I'll continue what I've been doing
1: so
8: far. Yes,
1: please, just keep a low profile and continue with what you're doing.
8: Okay.
1: And take extra care while driving and your health.
8: Okay, thank you so much for the advice. Really appreciate it. Thank you.
1: No problem, sir, no problem.
0: चलिए जब अनुचित ने उससे बोलते हैं ना मुझे लगता है कि प्लीज ध्यान से सुने सब लोग चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं हेलो जी
9: हेलो
0: जी आप कश्यप नाम अगर बताना चाहें तो वरना डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन
9: बेटे के लिए पूछना था उसका डेट ऑफ बर्थ सितंबर 28 2000 उसके लिए कौन सा फील्ड ठीक रहेगा अभी बिजनेस का डिग्री लिया है और एनालिटिक्स भी किया है मगर अभी फील्ड में जॉब में थोड़ी स्ट्रगल आ रही है एनालिटिक्स में
1: सर एनीवेयर वेयर नॉलेज इज रिक्वायर्ड दैट इज हर फील्ड ठीक है जिसमें पढ़ाई की है पढ़ाई को यूज कीजिए हर एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हर एजुकेशन
9: उसका बिजनेस किया हुआ है बिजनेस में डिग्री है उसकी
1: जो भी पढ़ाई की है ना उसको यूज करिए सबसे अच्छी ग्रोथ वहां पे मिलेगी दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से
9: ओके
1: यूज योर एजुकेशन दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर
9: या ही वाज हैविंग अ जॉब इन अ बैंक बट एनालिटिक्स
1: एब्सोल्युटली फाइन आई एम जस्ट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाटएवर द पर्सन हैज स्टडीड यूज दैट डिग्री पढ़ाई से ग्रोथ मिलेगा
0: हेलो जी
10: हेलो
0: यस व्हाट्स योर क्वेश्चन एंड योर
10: डेट ऑफ बर्थ जुलाई 1972 और अभी तो मेरा काम है लेकिन आई वॉन्ट टू गेट अनदर जॉब सो आई हैव माई इंटरव्यू टुमारो सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो एम आई गोइंग टू बी सक्सेसफुल एम आई गोइंग टू गेट अ सेकंड जॉब और व्हाट थैंक यू
0: ये तो बड़ा ट्रिकी हो गया कल ही इंटरव्यू है मुझे लगता है ये पूछना ही नहीं चाहिए था इस वक्त पर चले देखते हैं मानू जी क्या बताते हैं
10: अच्छा
0: क्योंकि मुझे लगता है कई बार आई डोंट नो आई पर्सनली फील के उसमें ना कोई अगर जो कहता है कि अच्छा होगा तो आप जरूर बहुत झील से जाते हैं माना अनुज जी ने कह दिया कि नहीं तो आप पहले उस माइंडसेट से जाएंगे विच इज नॉट गुड
1: गो फॉर इट सर गो फॉर इट गिव योर 100% योर टाइम इज नॉट बैड सर थोड़ा सा मूड स्विंग्स वाला टाइम है जस्ट कंट्रोल योर टेम्परामेंट एंड या यू आर नॉट इन अ बैड फेज ऑफ लाइफ
10: ऑलराइट
1: ओके
0: पर अगर आपका होता है तो हमें बताइएगा जरूर लड्डू खाने के लिए हम तैयार हैं ठीक है
1: नहीं सर मैं लड्डू नहीं खाता हूँ मैं रसमलाई खाता हूँ
0: चले रसमलाई इनकी रसमलाई मेरे लड्डू
1: थैंक यू सर ऑल द वेरी बेस्ट
0: चले ऑल द बेस्ट और राइट हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ हेलो जी चले दूसरे कॉलर की तरफ चलते हैं हेलो जी
11: हेलो
0: हाँ जी आपका क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ
11: My birthday is 10 October, mm-hmm.
0: 1972. Okay.
11: So, I want to know about my health, wealth and family.
0: Wealth and family. Ek hi nishane se teen, ek hi teer se teen shikar. मुझे लगता है health होता है तो सब चीजें ठीक रहती हैं. सबसे पहले आप वही prime importance पे होना चाहिए. अब फिर family, वो अपने आप में wealth है.
1: आपका सब कुछ ठीक है, देयर इज नो मेजर प्रॉब्लम एज सच. थोड़ा सा नहीं सर, आपका एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ, देयर इज नो मेजर प्रॉब्लम सीन. थोड़ा गुस्सा ज्यादा है, उसको कंट्रोल कीजिए बस.
9: ओके
1: ठीक है, थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करिए सर. रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर यू, टच वुड, गॉड्स ग्रेस, एवरीथिंग इज गुड.
0: हम कभी ना हमारी लाइफ में जो चल रहा है उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. देखें आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, कितनी मुश्किल से ये सुनने को मिलता है ना किसी के लिए कि आपकी लाइफ में सब अच्छा है. उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखें बस.
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये स्वाति जी ने बहुत ही अच्छी बात करी है. मैं सारे लिसनर्स को ये बोलना चाहूँगा, ऊपर वाले का शुक्राना करिए जिसको भी आप मानते हैं. यू नो अ गुड हार्ट फेल्ट थैंक्स एवरी डे विल डू वंडर्स फॉर यू.
0: वेरी नाइस. चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो जी. अरे बाप रे, ये क्या आवाज थी. हेलो, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ फोन का प्रॉब्लम है. मैं दूसरे कॉलर की तरफ चलती हूँ. हेलो. हेलो जी.
12: हेलो.
0: हाँ जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन प्लीज.
12: नहीं, ये मेरे अंकल के लिए. तो अनिल जी से जानना था कि आई शुड नॉट आस्क बट आई एम फोर्स्ड टू आस्क. Is it possible to give us like lifespan of the person from the date of birth?
1: I'm sorry, sir, I can't. उसके लिए तो सर थोड़ा सा ऊपर वाले के पास हेलो करने जाना पड़ता है. मैं अभी जाने के मूड में नहीं
12: हूँ.
1: आई एम सॉरी सर, बट दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ न्यूमरोलॉजी.
12: ओके फाइन, नो दैट्स
1: आई कैन डेफिनेटली टेल यू व्हेदर दिस पीरियड इज गुड, बैड और अगली, बट आई कैन नॉट प्रेडिक्ट एनी
12: एज. ओके ओके, नो प्रॉब्लम,
1: सॉरी अबाउट दैट.
0: चले चले, थैंक यू फॉर द कॉल. एक और कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो जी.
13: यस हेलो.
0: हेलो जी, हाय.
13: या 1st January 1963.
0: फर्स्ट जनवरी 1963.
13: या हेल्थ रिलेटेड पूछना था मुझे.
1: अच्छा है सर, कोई ऐसा मेजर वो नहीं है. अगेन थोड़ा गुस्सा एंड ईगो वाली बात है. दिमाग ठंडा रखिए सर, हेल्थ अच्छा ही है. कोई ऐसा इस साल में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है.
13: ओके जी.
1: ओके, बस गुस्से पे काबू रखिए सर.
13: ओके सर, थैंक यू.
0: मुझे लग रहा है कितने सारे लिसनर्स को आज आपने ये बोला गुस्सा कम, और मुझे लग रहा है इतने सारे मेरे फिल्मी नुक्कड़ की फैमिली वाले लिसनर्स गुस्से वाले हैं. पता ही नहीं चलता. देखें एक और कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो जी, आपका नाम बताना चाहे तो नाम बताएं, वरना डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन प्लीज.
14: हेलो, गुड इवनिंग.
0: गुड इवनिंग
14: स्वाति जी. मैंने अपना और अपनी वाइफ के रिलेशन के लिए और हेल्थ के लिए पता करना.
0: चलें, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी दोनों की आपको.
1: इससे देखिए, अगर
14: मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है
1: सर, यहां पर
14: 20th of June
0: जी
14: 1969.
0: 20th of June 1969 आपकी डेट है जी.
14: और मेरी है 16th of May 1962.
0: जी. तो वैसे अनुज जी बोलते हैं हमेशा जब कंपैटिबिलिटी दो डेट्स की चेक करते हैं तो इट ऑलवेज टेक्स सम टाइम. बट हाँ, जैसे नंबर्स आज वो बताना चाह रहे थे शुरू में, फिर हमने कॉल्स लेनी शुरू कर दी कि कुछ नंबर्स किसी नंबर के साथ कंपैटिबल होते हैं, कुछ नहीं होते. और वो हम बात कर रहे थे कि अगर कंपैटिबल नहीं होते, क्योंकि अब तो हम साथ हैं पहले से और हमें पहले तो पता नहीं था, तो क्या किया जाए. तो उसके लिए वो कह रहे थे कि देयर आर स्मॉल थिंग्स विच कैन हेल्प. वो रेमिडीज की तरह होती हैं कि, और वो बहुत सिंपल होती हैं जो हम सब कर सकते हैं. देखें आपके बारे में क्या बताते हैं
1: सर. थोड़ा यू नो कंपैटिबिलिटी जब दो लोगों की निकालनी होती है, ये सभी के लिए है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. बट सर आपने जो सवाल किया है उसका फर्स्ट ग्लांस पे जो मेरे पास जवाब है वो थोड़ी सी नरम गरम रिलेशनशिप है.
14: एग्जैक्टली राइट.
1: राइट, बट अगर सर देखिए, ये डिटेल एनालिसिस करने के लिए ना, जब भी व्हाट इज ईच पर्सन ब्रिंगिंग ऑन टू द टेबल प्लेट, राइट, तो दोनों का डिटेल देखना पड़ता है. वो इतनी जल्दी मैं नहीं निकाल सकता. अगर किसी को
14: आप सिर्फ वाइफ का बता दें. आपसे मैंने बहुत पहले भी अपना पूछा था
1: जी,
14: मेरी वाइफ के लिए, मगर 20th of June 1969.
1: सर मूड स्विंग्स है, थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम है यहाँ पर दिख रही है जो. राइट, 666 है तो मतलब इनका फैमिली के लिए प्यार जो है ना, वो शक के लेवल तक चला जा सकता है. राइट, तो यहाँ थोड़ा सा आई वुड से आपकी तरफ से ज्यादा थोड़ा वाइफ की तरफ से में प्रॉब्लम है यहाँ पे. राइट, यू ट्राई एंड एडजस्ट, बट थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा नरम गरम सा सिस्टम है, राइट. बाकी आप सर, मेरा सभी के लिए मेरा नंबर है 6473308555. आप डिटेल में अगर कंपैटिबिलिटी, हेल्थ या रिलेशनशिप और करियर, ये चार स्ट्रेंथ्स हैं न्यूमरोलॉजी की, आपको कुछ भी जानना हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. मैं रिपीट कर देता हूँ 6473308555. सर यू कुड कॉन्टैक्ट मी इन आफ्टर द शो एंड प्रॉब्ली आई विल हेल्प यू आउट विद दिस. ओके,
14: थैंक यू.
0: 6473308555 अनुजी का नंबर है. आफ्टर दिस सेगमेंट आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं. और उसमें जैसे कि अनुजी ने कहा, कई बार न्यूमरोलॉजी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होती एज पर अनुजी, कि आपको ये पता चल जाए कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, वेयर इट इज रॉन्ग वेयर इट इज राइट, कहाँ पे भी ये पहुँचती है.
1: इन तीन चार सेक्टर्स के लिए तो बहुत अच्छी है. न्यूमरोलॉजी की कमी होती है, इट इज़ नॉट डिजाइंड फॉर प्रिडिक्शंस, राइट. तो प्रिडिक्शन से हमारा, हम सिर्फ ये ज़रूर देख सकते हैं कि ये फेज कैसा चल रहा है. अगर फेज अच्छा है तो रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे, राइट. बट कभी कभी क्या होता है कि अच्छे फेजेस में भी बुरे दिन होते हैं. लाइक आई कैन कैलकुलेट पर्सनल ईयर. जैसे अभी कॉल आई थी कि वो पूछ रहे थे कि कल उनकी इंटरव्यू है. अगर ये मेरे को 10 मिनट का टाइम दे दें तो मैं इनका पर्सनल डे तक निकाल के बता सकता हूँ कि कल का दिन इनके लिए कैसे जाने वाला है.
0: अच्छा,
1: तो उस तरह से बता सकते हैं कि वेदर द स्टार्स आर अलाइंड इन योर फेवर और अगेंस्ट यू. बट जनरली यू नो आई ऑलवेज सेड कि अगर आप मेरे से कुछ फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी वॉज नेवर डिजाइंड फॉर इट. It is designed more to balance your life, how to help you succeed. ये वैसी बात है कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं और अगर आपको एक वार्निंग साइन मिलता है कि स्पीड ब्रेकर अहेड, तो आप पहले ही ब्रेक मार लेंगे, राइट. इंस्टेड कि आप जाके बम्प करेंगे स्पीड ब्रेकर के ऊपर, आप पहले स्लो डाउन हो जाएंगे. सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ न्यूमरोलॉजी हेल्प्स यू. इट कैन हेल्प यू टू फॉर्मेट यू नो द ऑल द बैड पार्ट्स ऑफ योर लाइफ एंड जस्ट स्टिक ऑन टू द गुड वंस.
0: ओके, तो आप उसको डिजाइन बेटर कर सकते हैं राइट डायरेक्शन के लिए,
1: बैलेंस
0: कर सकते हैं. मैं और एक और कॉलर की तरफ चलती हूँ. हेलो जी.
15: हाय देयर.
0: हाय, एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ?
15: हाय, माय डेट ऑफ बर्थ इज March 24th, 1988. आई एम कॉलिंग बिकॉज़ आई वांटेड टू नो अबाउट हेल्थ रिलेशनशिप एंड करियर.
0: ओके, तो हेल्थ रिलेशनशिप एंड करियर. देखिए, घूम फिर के हम उन्हीं तीन चीज़ों पे हमारी ज़िंदगी अटकती है. कहने को ज़िंदगी के चार पिलर्स होते हैं, यहाँ पे मुझे तीन पिलर्स मेनली दिखते हैं कि हेल्थ रिलेशनशिप एंड करियर.
1: मैम, सी, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ 6 and 8, बट द प्रॉब्लम इज यू वर बॉर्न ऑन 88 एज वेल. सो 3 times 8 डिलेज ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ. ओके, यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बट लाइफ द सक्सेस इज प्रीटी ड्रैग्ड, प्रीटी स्लो. So for you, the golden line would be success delayed but not denied.
15: Okay.
1: Good chances of relationship problems as well.
15: Okay.
1: Okay. But keep working hard, you will definitely reach what your destiny to do.
15: Okay. And in terms of health?
1: Health is okay, ma'am. As long as you keep working hard, sweat it out. That is the best remedy for you.
15: Okay.
1: By sweat it out, I mean literally, in literal sense, physical hard work.
15: Okay.
1: Okay.
15: Okay. And also relationship or marriage as well.
1: Ma'am, there are issues. When 3 times number 8 comes in, though your birth number is very, very strong, 24 is a very, very good date. It attracts a lot of romance. But 3 times 8 is a huge negative.
15: Okay.
1: All right, ma'am. You take care.
0: All right. Chalte hain next caller ki taraf. Hello, ji.
16: Hello.
0: Yes, what's your date of birth and question?
16: My date of birth is June 4th, 1950.
0: Okay.
16: I'm having currently some new health issues. So I just wanted to know about it.
0: New health issues.
1: Ma'am, you are in an anti-phase. Kuch, you know, anything to do with your gut, to your mental health, this is not a very good year.
16: Okay.
1: Take care of yourself, ma'am. This is not a very, very, I would not call it the best time of your life.
16: Okay, and how long it will go, roughly?
1: I can tell you.
16: Only health wise not good or otherwise?
1: Mental stress.
16: Okay. Yeah.
1: Okay. That is the biggest thing right now.
16: Okay.
1: Okay. Otherwise, you've had a fantastic life. And this particularly this year is not very great, but overall you've had a fantastic life.
16: Yeah, I know that.
1: God bless you, ma'am.
16: Thank you very much. I appreciate it.
0: Okay. Thanks. Next caller. Hello, G. Hello. Okay, I got disconnected. हम चलते हैं एक और कॉलर की तरफ. हेलो जी.
17: हेलो.
0: हेलो जी. योर डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन.
17: मेरी डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 11, 1957 है या 59. ईयर में आई एम जस्ट कंफ्यूज. तो अब आप देख लें कि आजकल
0: ये मुझे अनुजी से पूछना पड़ेगा. अनुजी एक चीज बताएं कि बहुत सारे लोगों को डेट पता होती है, ईयर नहीं याद, जैसे कब था, या कई बार आजू बाजू याद होता है, तो उसमें आप कुछ कर पाते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट?
1: कर तो सकते हैं, थोड़ा टाइम मिले तो ट्रेड्स पूछ के आपको पता लग जाएगा कि किस तरफ झुका हुआ है.
0: अच्छा,
17: राइट. तो
1: चलिए सर 57 की बात करते हैं. एक तो पहले ही 5 बारी 1 बैठा हुआ है.
17: अच्छा,
1: बहुत ही अच्छी बात है. ये अमिताभ बच्चन, ओशो, रजनीश ऐसे लोगों के पास है.
0: अरे बाप रे.
17: लेकिन आजकल जो क्राइसिस चल रहे हैं उसका क्या किया जाए? या पहले आप बताएं जरा क्या है क्या.
0: मैं इतने स्टूडियो के नंबर फिर से बता देती हूँ, 416-593-0055.
1: सर अगर 57 है तो क्राइसिस होना जायज है.
17: अच्छा,
1: ठीक है. अगर 59 है तो गेम पूरी चेंज हो जाएगी.
17: नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि 57 या 59.
1: आप मेरे से ऑफ एयर बात कर लीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा.
17: अच्छा, एक और पूछूंगा अगर वाइफ के बारे में बता सकते हैं, उनकी तो कंफर्म डेट है.
0: अच्छा, उनकी कंफर्म डेट पूछे पूछे.
17: उनकी है नवंबर 4, 1964.
1: क्या पूछना चाहते हैं सर?
17: ये कि हेल्थ के बारे में कुछ हेल्थ इश्यू है या और जो कुछ और.
1: अच्छा टाइम है उनके लिए, ये टाइम बहुत अच्छा है उनका.
17: मेन क्वेश्चन इज फॉर एग्जांपल लाइक. अच्छा, मैं एयर पे हूँ, ऑफ द एयर हूँ?
0: आप एयर है, आप एयर पे, ऑन एयर पूछ रहे हैं आप सर. एक काम करें, अगर जो आप कंफर्टेबल नहीं ऑन एयर पूछने में, मैं आपको सर का नंबर दे देती हूँ. 6473308555 इनका नंबर है. अनुजी को आप 7 बजे के बाद, इस सेगमेंट के बाद कॉल पर्सनली कर सकते हैं.
17: 330 8555 8555 330 8555.
0: चले, थैंक यू सर. ऑल राइट, नेक्स्ट कॉलर. हेलो जी.
18: हेलो,
0: हाँ जी, आपका क्वेश्चन.
18: हेलो,
0: हाँ जी, आपका क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ.
18: July 15, 1984, हेल्थ एंड जॉब.
0: 1984. ओके. मैंने आपको सॉरी, मैंने आपको बहुत पुराना बना दिया.
1: 30 साल पुराना बना दिया इन्होंने
0: जी.
1: मतलब DDL से शोले पे ले गए आप इनको. 1984 you said, right?
0: जी.
18: Yes.
0: में मैं सोच रही हूँ कौन सी फिल्म पॉपुलर थी मोस्ट, पर हम आप तो पैदा हुए थे, आपको क्या पता होगा, है ना?
1: ओके. ओके.
0: Meanwhile, just a reminder, आप लोग सुन रहे हैं फिल्मी नुक्कड़, स्वाति और हैडी के साथ.
1: This year has been a bit up and down kind of a thing.
18: जी, हेल्थ के लिए?
1: नहीं, हेल्थ के लिए नहीं सर, आप तो बने बिजनेस के लिए है सर, बिजनेस कीजिए. थोड़ा सा ये ईयर ना थोड़ा राहु का साल है, हालांकि आपका एंटी नहीं है बट नॉट योर बेस्ट फ्रेंड आइदर, तो थोड़ा सा ना लाइफ को ऊपर नीचे लेके जाता है.
18: बिजनेस के लिए बने, बिजनेस तो लॉस हो गया.
1: हाँ, कुछ भी हो सर, इस साल में आपको कुछ भी पंगा लेना नहीं चाहिए. जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग, कंटिन्यू विद इट. बट यू हैव अ ग्रेट ग्रेट डेट ऑफ बर्थ, बहुत ही अच्छी ग्रेट बन के बैठी है. यू कैन डू रियली रियली वेल. If you are struggling, then there are only two reasons, sir. Either a wrong choice of career or a wrong name number.
18: Wrong choice of career and what else?
1: Wrong name. So name in numerology acts like a brahmastra, a master stroke.
18: Okay.
0: तभी तो हम बताते हैं ना कि लोग अपने नाम में extra A लगाते हैं, extra I लगाते हैं, something like that, है ना?
1: This kind of a date of birth, there can only be two reasons for not being successful, which I just mentioned. Okay.
18: Okay.
1: You have a potential to be a, you know, 100 million person.
18: Okay.
1: थैंक यू.
0: चलिए मैं कुछ कॉल्स जल्दी से और लेती हूँ, एक दो कॉल्स, क्योंकि पर मैं सबको ये याद ज़रूर दिलाना चाहूँगी कि अगले ट्यूसडे हमारे साथ अनुज जी फिर जुड़ेंगे. अगर आज आपकी कॉल पिक नहीं हो पाई है, प्लीज़ अगले ट्यूसडे को फिर से 6:15 हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, वरना आप अनुज जी से ऑफ एयर बात कर सकते हैं उनके पर्सनल नंबर पर, विच इज़ 6473308555. अनु जी 7 बजने वाला है, पर मैं एक कॉल और लेने की कोशिश करती हूँ, एक या दो देखते हैं. हेलो जी. हेलो, देखिए मुझे आवाज. हाँ चले, हाई, आप मुझे प्लीज क्विकली अपना डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बताएं.
19: 28 अगस्त 1972.
0: जी
19: मेरा क्वेश्चन है, मैं जॉब का जॉब अनदर, शुड आई गेट अनदर जॉब और
0: कंटिन्यू विद दिस
19: और बिजनेस?
0: अच्छा, गो ऑफ बिजनेस.
19: माय बिजनेस इज नॉट गोइंग वेल, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड.
0: ओके ओके, श्योर.
1: मैम जॉब के बारे में सोचिए भी मत. ठीक है, यू वर मेड फॉर बिजनेस एंड दैट इज व्हाट योर स्ट्रेंथ इज. ओके, ऐसी डेट बनी ही बिजनेस के लिए होती है.
0: आप अगर जो पता करना चाहते हैं कि कौन सा राइट चॉइस ऑफ बिजनेस है आपके लिए हो सकता है या नाम में क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए आप अनुज जी से बात कर सकते हैं. 6473308555. I have to close down this calling session, अनुज जी, now, क्योंकि अगले हफ्ते के लिए फिर मुलाकात करने के लिए कुछ बचना चाहिए और 7 बजने वाला है. तो थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड आस्किंग योर क्वेश्चंस एंड यू नो ट्रस्टिंग इन दिस नंबर्स डू वंडर्स, जो एक अनुजी बोलते हैं हमेशा.
1: नंबर्स मैम डेफिनेटली डू वंडर्स. ओके, मैं बोलता हूँ कि मुझे कॉल मत कीजिए, इधर कॉल मत कीजिए, सीधा मेरे पास आइए एंड कल से ही कोर्स शुरू हो रहा है.
0: अच्छा, खुद सीखिए.
1: एनीबॉडी हु वांट्स टू जॉइन इन, प्लीज यू आर मोर देन वेलकम.
0: चले, खुद सीखिए आप और अब फिर आप अनुजी की तरह खुद बताएंगे कि हाउ नंबर्स चेंज योर लाइफ एंड डिड वंडर्स फॉर यू एंड यू कैन ऑल्सो हेल्प अदर पीपल विद देयर लाइव्स. तो फिलहाल आपसे लेते हैं विदा इन द सेगमेंट नंबर्स डू वंडर्स. थैंक यू.
1: थैंक यू एवरीवन.

इंटरनेशनल एक्सचेंज का आज का रेट है 194.60 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं पाकिस्तान में एमसीबी की के साथ साथ पूरे आप किसी भी बैंक में, पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश बैंक अकाउंट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए, gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 194.60 रुपये। कॉल कर लीजिए 905-306-0000, 905-306-0000। ट्यूजडे के दिन कामरान रशीद साहब आज ग्लोबल ट्रेवल टूर से हमारे साथ होंगे और केयर इंश्योरेंस से आरिफ शेख साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तफसीली खबरें आपके लिए 7:30 बजे पेश की जाएंगी और 8 बजे के बाद हमारा सोशल मीडिया पे प्रोग्राम शुरू होता है और जिसमें यूट्यूब है, हमारा टेलीविजन चैनल है, टिकटॉक है और इसके साथ साथ फेसबुक पे लाइव आपके लिए प्रोग्राम पेश करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे, अनीस फारूकी साहब यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, कुछ क्वेश्चन उनके साथ डिस्कस करेंगे, फिर आपकी लाइव कॉल लेंगे 8 बजे। ठीक, आप लिंक रहिएगा उसी फोन नंबर के थ्रू 416-593-0003, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM। मेरे चुप है सामिन, खुश नसीबी किसी शय का नाम नहीं है, समाजी मर्तबे का नाम भी नहीं है, बैंक बैलेंस का नाम भी नहीं है। खुश नसीबी एक मुतवाजन जिंदगी का नाम है। ना जिंदगी से फरार हो, ना बंदगी से फरार हो, एक ऐसा अंदाज के ना लालच हो, ना कंजूसी, ना बुखल। लालची इंसान पैसे गिनता रहता है, जमा करता रहता है और आखिर में अजाब की गिरफ्त में आ जाता है। कंजूस अपनी दौलत के इस्तेमाल से महरूम है, वो किसी की माल की हिफाजत करता रहता है। खुश नसीब इंसान हक के करीब रहता है, वो हवस और हसरत से आज़ाद है, वो फना के देश में बका का मुसाफिर है। इसका दिल जलवाए पुर नूर से मामूर है, वो अपने आप से राजी है, अपनी ज़िंदगी पे राजी है, अपने हाल पे राजी है, अपने हालात पे राजी है और अपने ख्यालात पे राजी है और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने खुदा पे राजी है, हमेशा हमेशा के लिए राजी। सलाम है खुश नसीबों की खिदमत में।

0: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
1: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
0: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
1: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
0: दैट्स वंडरफुल।
1: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
0: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
1: ऑन बवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैकलॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट सी।
2: प्राइड ऑफ मिसिसागा बारबेक्यू टुनाइट रेस्टोरेंट, 35 डंडा स्ट्रीट वेस्ट, हाईवे 10 और डंडास के इंटरसेक्शन मिसिसागा में। बारबेक्यू का असली मजा बारबेक्यू टुनाइट पर। चरगा, लाहौरी फिश, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम्ब चॉप्स, अफगानी टिक्का, नेहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो, बारबेक्यू टुनाइट रेस्टोरेंट। 9052680088, इट्स 9052680088, हाईवे 10 और डंडास के इंटरसेक्शन मिसिसागा।
3: ट्रैवल एंड टूर्स मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं, पीआईए के कंसोलिडेटर हैं और पीआईए टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं। बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट। उम्रा और ज्यारात की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 9052753555, 9052753555,
2: 918 Dundas Street East, Unit 1C, Mississauga।
4: जी हाँ, 9052753555 ग्लोबल ट्रेवल टूर के रबते के नंबर है, यही नंबर इनके व्हाट्सएप पे भी है। ग्लोबल ट्रेवल 786@gmail.com इनकी ईमेल एड्रेस है। दुनिया भर में कहीं भी आपको सफ़र करना हो आप रबता कर सकते हैं। कामरान रशीद साहब हमारे साथ हुआ करते हैं और CEO हैं। इन तमाम ऑपरेशन अंडर वन रूफ आपके लिए, इमिग्रेशन के मसाइल कोई हों, अगर आपके कोई मैटर्स हों, मनी ट्रांसफ़र करना हो या कॉन्सुलेट सर्विसेज, तमाम चीज़ें अंडर वन रूफ आपके लिए जो हैं वो लेकर आते हैं। तमाम बड़े एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं। आपको हज के लिए जाना है, उम्रे के लिए जाना है या आप दुनिया में कहीं भी सफ़र करना है, लीजर ट्रिप है आपका, 9052753555 रबते के नंबर खुश आमदेद कहेंगे। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम।
5: जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी वसात से तमाम सुनने वालों को भी मेरा बहुत सलाम।
4: बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा पहला सवाल एज यूजुअल, अब तो कहते हैं एक ही सवाल है कि सीट सेल चल रही है, सस्ती टिकट पाकिस्तान खासतौर पर जाना हो तो क्या हो सकता है?
5: बिल्कुल सर आशिफ भट्टी साहब, बिल्कुल पीआईए की सीट सेल अभी चल रही है। हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया 15 जुलाई तक पीआईए की सीट सेल है, कि 15 जुलाई से पहले पहले टिकट खरीद लें। और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग ये कि अब हम जुलाई में खड़े हैं मगर ये टिकट्स आप 30 नवंबर तक जिनका इरादा है जाने का, अच्छा, वो अभी से इन एडवांस परचेज कर लें 15% डिस्काउंट फेयर के साथ और वापसी विद इन 6 मंथ कभी भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ह्यूज सेल है, मेगा सेल है, समर सेल के नाम से 15% डिस्काउंट के साथ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के साथ आप आइए और पहले पाइए की बुनियाद पर आप सस्ते तरीन टिकट लेने हो। आपने अगस्त में ट्रेवल करना है, सितंबर, अक्टूबर, इवन नवंबर 30 तारीख तक जो है वो सीट सेल है।
4: और नवंबर तक आप ट्रेवल करेंगे और फिर 6 महीने के अंदर वापस आ सकते हैं, ऐसा ही?
5: बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ सबसे बड़ा अच्छी अच्छी बात है कि अगर आपने पाकिस्तान से ऑनवर्ड सऊदीया का सेक्टर ऐड करना हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, थोड़े से लेकर आप उम्रे की सआदत भी हासिल कर सकते हैं।
4: अच्छा, उम्रे के हवाले से हज पे तो मैं बात करता हूँ, उम्रे के भी आपके पैकेजेस रेगुलरली हुआ करते थे, अभी कोई कमिंग मंथ्स में है कोई उम्रे का पैकेज आपका?
5: कमिंग मंथ्स में है बिल्कुल अशोक भट्टी साहब, एक हमारा अगस्त में भी था और वो भी जो सोल्ड आउट हुआ, लेकिन अभी जो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ जो आज आपके प्रोग्राम के शुरू होने से पहले फाइनलाइज किया, okay, वो नवंबर है, नवंबर 3rd को हमारे यहाँ से इजिप्ट एयर के साथ बुकिंग कंफर्म्ड, फ्लाइट कंफर्म्ड, क्वाड बेस के ऊपर, बेहतरीन होटल्स के साथ, क्लोज टू हरम। बिलखसूस मैंने कोशिश ये की है कि नवंबर में मौसम जो कि बेहतर होता है, हमारे बहुत से सीनियर्स, हमारे मदरली फिगर्स, हमारी खवातीन जो जाना चाहते हैं उनके लिए खसूसी तौर पर ये होटल्स का ख्याल रख के बनाया गया पैकेज, जिसकी कॉस्ट विद फर्स्ट फ्राइडे इन मदीना मनवरा मिनिमम 8 डेज $2,975, $2,975 में टिकट, होटल, फुल ट्रांसपोर्टेशन, ज़ियारात, लग्जरी बस के जरिए ट्रांसफर, ईच एंड एवरीथिंग, यानी आप 2975 देकर आपको वहां खर्च कुछ नहीं करना होगा. एक आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, आपके ट्रांसफर शामिल हैं, आपके फोर स्टार होटल्स की अकोमोडेशन शामिल है और एयरलाइन का टिकट इंक्लूड योर उमरा वीजा.
4: मतलब ऑल इंक्लूसिव एवरीथिंग इसमें.
5: वेरी गुड. एवरीथिंग
4: 2975 ठीक है.
5: और जी हाँ, और मैं ये बात इससे दावे के साथ कहता हूँ कि आप एप्पल टू एप्पल मैच कीजिएगा, आपको ग्लोबल ट्रेवल एंड टूर्स के इस उमरा पैकेज की प्राइस सबसे कम मिलेगी.
4: बिल्कुल ठीक हो गया. मुनसामीन आप कॉल कर लीजिए 905-275-3555. हज के हवाले से रजिस्ट्रेशन हो रही है और मेरे ख्याल अभी तो कोई बड़ी पॉलिसी चेंज आई है कि नेक्स्ट ईयर्स की भी रजिस्ट्रेशन शायद उन्होंने कह दिए कि कर सकते हैं, ऐसा ही है कोई?
5: बिल्कुल ऐसा ही है शिवट साहब. इस वक्त नेक्स्ट ईयर की जो 2027 हज की रजिस्ट्रेशन तो चल रही है, शुरू है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कल हज पॉलिसी शायद अनाउंस करने जा रहे हैं, जिनका विजन 2030 तक की पॉलिसी को भी वो डिक्लेयर करेंगे. मगर इस वक्त हम बात करते हैं 2027 में जो हज करने के लिए जाने की ख्वाहिशमंद है, तो प्लीज आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए. और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स नहीं, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बनवाएं. जिनके नाइकोप वैलिड हैं वो सिर्फ नाइकोप कार्ड के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं. जिनको अगर कोई मुश्किल हो हमसे राबता कर सकते हैं. राबते का नंबर है 905-275-3555. और इसके साथ साथ बताता चलूं कि अभी बहुत जल्द ये रजिस्ट्रेशन भी शायद खत्म हो जाए. इस वक्त तक जो दादो शुमार आया है तकरीबन 2.5 से 2.5 लाख पाकिस्तानियों ने रजिस्टर करवा लिया है. लिहाजा आप हमसे रब्ता कीजिए. हज के पैकेज की कोई भी मालूमात चाहिए, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको जो हम यहाँ प्रॉमिस करके एक चीज एक्सप्लेन करेंगे आपको वही चीज वहीं मिलेगी. आपको इकोनॉमी पैकेज से लेकर 5 स्टार तक, आपको क्लॉक टावर के 10 डेज पैकेज से लेकर मदीना पाक के 5 स्टार होटल से लेकर मीना में आपको जो है मकतब ए वीआईपी पैकेज के जो ग्रेड्स गारंटेड यहाँ देंगे इंशाल्लाह आपको वो वही मिलेंगे सर्विसेज के साथ.
4: और आपने जो बताया है जो इकोनॉमी पैकेज है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है?
5: जी जो पैकेज मिनिमम पैकेज इस वक्त हमने वर्कआउट किया है वो $8,500 से $8,500 में जो भी की कैलकुलेशन की है इसके मुताबिक इसमें जो है ये इकोनॉमी पैकेज. लेकिन जब मैं इकोनॉमी पैकेज की बात करूं तो मैं यहाँ वाजे कर दूं कि हम इकोनॉमी पैकेज में मकतब अपना वही वीआईपी ही रखते हैं Zone 1 का, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. क्योंकि जब मैं इकोनॉमी की बात करूंगा तो उससे मुराद मेरे जहन में ये आता है, खुद मैं बना लेता हूं कि मैं अगर 5 स्टार होटल नहीं दे रहा तो मैं जो 4 स्टार होटल भी दूं वो भी ऐसा हो कि वो हमारे यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, ना कि पाकिस्तान से आए हाजी जो परेशान या शिकायत करते हैं वो नहीं होता. यही वजह है कि कैनेडियंस जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं वो कोशिश ये करते हैं कि हम पैकेज तो भले पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ले रहे हैं लेकिन अब अपने कैनेडियन एजेंट्स को एंगेज करें ताकि उनकी कमिटमेंट जो है वो हमारी जरूरत के मुताबिक पूरी कर सके.
4: 905-275-3555 पे आप अभी रब्ता कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन भी करवा लीजिए. globaltravel786@gmail.com इनका ईमेल एड्रेस है और यही नंबर 905-275-3555 जो है वो इनका व्हाट्सएप नंबर भी है. कारण भाई थैंक यू वेरी मच. कुछ और ऐड करना आपने?
5: से बहुत शुक्रिया. बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि डेडलाइन करीब है आप अपनी रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाएं.
4: वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया भाई, फिर आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह. थैंक यू. नंबर नोट कीजिए 905-275-3555. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.5. अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ शदीद हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है. अमरीकी फौज के मुताबिक तजारती जहाजों को हदफ बनाने उन पर हमला करने के जवाब में ईरान के खिलाफ हमले किए गए हैं. ईरान की जानिब से की गई जारहियत गैर जरूरी और खतरनाक थी और ये जंग बंदी की खिलाफ वर्जी थी, ये कहना है अमरीकी अफवाज का. दूसरी तरफ ईरान के जनूबी साहिली शहर है सर्क, उसमें धमाके सुने गए हैं. ईरानी मीडिया ने इसको जो है वो कंफर्म किया है. 7 धमाके सुने गए हैं और 6 मिसाइल गिरने की इत्तला हैं. इस वक्त आपको ले चलेंगे रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम पे आप सुन रहे हैं, आप के यकीनन इंतजार में होंगे. लिए चलेंगे आज की शायरी के सेगमेंट की तरफ.
6: हसरत है तुझे सामने बैठे कभी देखूं, मैं तुझसे मुखातिब हूं तेरा हाल भी पूछूं. दिल में है मुलाकात की ख्वाहिश की तभी आग, मेहंदी लगे हाथों को छुपा कर कहां रखूं. जिस नाम से तूने मुझे बचपन में पुकारा, एक उम्र गुजरने पे भी वो नाम न भूलूं. तू अश्क ही बन के मेरी आंखों में समा जा, मैं आईना देखूं तो तेरा अक्स भी देखूं. پوچھوں کبھی غنچوں سے ستاروں سے ہوا سے تجھ سے ہی مگر آ کے تیرا نام نہ پوچھوں جو شخص خواب میں آنے سے بھی خائف آئینہ دل میں اسے موجود ہی دیکھوں حسرت ہے تجھے سامنے بیٹھے کبھی دیکھوں میں تجھ سے مخاطب ہوں تیرا حال بھی پوچھوں

0: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147 6472714147। डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स अब मिसिसागा के बाद स्कारब्रो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन, 416-757-9999। दांतों की कोई भी बीमारी हो, आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट, ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन, 905-232-5678। अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी राब्ता कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के राब्ते के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन।
2: हेलो एवरीवन, माय नेम इज अहसनुल हफीज एंड आई एम योर ओंटारियो लिबरल कैंडिडेट इन स्कारबो साउथ वेस्ट। व्हेन आई इमिग्रेटेड टू कनाडा बैक इन 2002, आई चोज टू मेक स्कारबो माय होम। बैक देन लाइफ वॉज अफोर्डेबल, बट टूडे इट इज नॉट। Scarborough deserves better and I will fight for a more affordable Scarborough. Visit votehafiz.ca to learn more.
3: This ad has been authorized by the CFO for the Scarborough Southwest Provincial Liberal Association.
4: बहुत खुशबू आ रही है खाने में। ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
5: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
6: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
7: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550 7465550।
1: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल डिफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बाकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
8: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन, ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600।

0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा। इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, इट्स 9058280009। यो लॉगिन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, पाकिस्तान
1: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM। बहुत जल्द हमारे साथ केयर इंश्योरेंस एंड फाइनेंस लिमिटेड जो है वो ज्वाइन करेंगे और इसके जो रूह रवां हैं, CEO हैं, बहुत से ऑपरेशंस हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, आरिफ शेख साहब हैं। आज हमने कहा क्योंकि इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा उनसे इस हवाले से बात कर लें, फिर रेगुलरली जो है इनके ऐड के साथ रेगुलरली एवरी वीक इनका इंटरव्यू जो है वो क्या करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। आरिफ शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम बेटी साहब, आपको भी और तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम।
1: आप एक हमारी कम्युनिटी में फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है आपका, केयर इंश्योरेंस एक बहुत जाना पहचाना नाम है। मैं इसे सोच रहा था कि अब अवेयरनेस लोगों में बढ़ती जा रही है, तो क्या हर शख्स का जो कुछ वेल्थ रखता है या ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, तो क्या फाइनेंशियल प्लानिंग भी इतनी अहम है जितनी बाकी चीज़ें? उनके लिए एक फाइनेंशियल प्लानर होना ज़रूरी है क्या?
2: बहुत शुक्रिया बेटे साहब, इस सवाल का बड़ा आसान सा जवाब है। मैं हमेशा से देता चला आ रहा हूँ कि कनाडा का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल सिस्टम है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी है। और अगर जब कॉम्प्लिकेशन होगी तो फिर आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए जो आपको एक्सप्लेन कर। अगर आप इस सिस्टम को प्रॉपरली इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो यकीन जानिए कि आपकी जिंदगी में सिर्फ आसानियां ही पैदा होती है, मुश्किल कोई नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके सवाल का आसान जवाब यह है कि आप ज्यादा कमाते हो, कम कमाते हो, बहुत अमीर हो, मिडिल क्लास से ताल्लुक हो, ये जरूरी है आपके लिए कि आपके पास एक फाइनेंशियल
1: होना चाहिए। ठीक, careinsurance.ca की वेबसाइट है, इस पे जाके भी आप तमाम सर्विसेज के हवाले से देख सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए 416-722-1111, 416-722-1111। शेख साहब, आज क्योंकि इंट्रोडक्टरी है हमारा प्रोग्राम, क्या क्या सर्विसेज जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं?
2: देखिए, हम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ केयर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल लिमिटेड आपको तमाम जो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग है, एजुकेशन प्लानिंग है, टैक्स प्लानिंग है, कैश फ्लो प्लानिंग है, ये सब चीजें आपको, देखिए आप ये सब चीजें एक दूसरे से अटैच होती हैं। तो हम आपको, अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे careinsurance.ca तो आपको हमारी तमाम सर्विसेज मिलेंगी, उसमें आपके पास लाइफ इंश्योरेंस के साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स है, सेक फंड इन्वेस्टमेंट है, ट्रेवल विदा है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंस, आपने स्टेट प्लानिंग है, जब आपने अपनी जायदाद को अपने बच्चों को ट्रांसफर करना है तो उसमें आपने कैसे उसको टैक्स एफिशिएंट वे में करना है, ये तमाम सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला जो है हम आपको दे रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2006 से हमने शुरू किया था, 26 में आ गए, 20 साल हो गए इस काम को करते हुए।
1: 416-722-1111, 416-722-1111 इनका नंबर है, careinsurance.ca इनकी वेबसाइट है। अच्छा, बहुत से लोगों का ख्याल है क्योंकि आजकल तो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बात होती रहती है, तो क्या ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपको प्रोटेक्ट भी कर रही हो, इन्वेस्ट के साथ साथ आपको रिटर्न भी दे रही हो?
2: बिल्कुल, और ये प्रोडक्ट जो है वो शहर में मौजूद है, मुख्तलिफ बैंक्स हैं, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है वो दे रही होती है। मैंने आपसे कहा ना कि कैनेडियन सिस्टम में मोस्टली गारंटीज आपको गवर्नमेंट दे रही होती है,
3: ठीक है।
2: तो देर आर आज के इस दौर में ना भट्टी साहब एक मिनट की जो चीज है, आज के इस दौर में जब हर दूसरा शख्स जो है वो कैश फ्लो से प्रॉब्लम में आया हुआ है, उसके लिए जरूरी है कि वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करे जहां पर उसको प्रोटेक्शन भी मिल रही है और कैश फ्लो भी मिल रहा है। और ये प्रोडक्ट डेफिनेटली मौजूद है, हम अपने क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास बड़े ऐसे क्लाइंट जो सेटिस्फाइड हैं, उनकी बड़ी तादाद मौजूद है।
1: 416-722-1111 पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मशवरा क्या है लोगों के लिए कि हालात तो जैसे फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है, क्या हर हाल में लोगों को कुछ ना कुछ बचत करनी चाहिए? कुछ लोग मैं सुनता हूं कभी कि अगर आप आज $100 छोटी उम्र में जमा करना शुरू कर देंगे तो इन लार्ज में तो बहुत बड़ी रकम बन जाएगी आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से।
2: देखिए, हम जब CFP में पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज बताई जाती है कि फोर्स प्लानिंग जो होती है ना, फोर्स सेविंग, वो हमेशा आपके काम आती है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। आप देखें, वो पाकिस्तान में पंजाबी में कहते थे कमेटी डालते हैं, उर्दू में कहते हैं BC डालते हैं।
1: जी जी।
2: ये जो कॉन्सेप्ट है फोर्स का, क्या आपने हफ्ते, बाई वीकली, मंथली जो छोटी छोटी सेविंग करते हैं, मेरे पास ऐसे क्लाइंट है जिन्होंने अपने 10-12 साल के बच्चों के अकाउंट अपने साथ मिलकर खोले, और जब बच्चे 18 साल पे गए तो वो हमने उन बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिए। वो बच्चे आज उस पैसे से वहां पर $80,000-$90,000 जो है वो बना के बैठे हुए हैं, और कल को वो अपनी एजुकेशन में जाएंगे, आगे जाएंगे तो उनके काम आ रहा होगा। छोटी छोटी सी प्लानिंग करनी होती है जो आपका एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको गाइड कर सकता है, और वो आपको जरूर करनी चाहिए।
1: 416-722-1111 careinsurance.ca इनकी वेबसाइट है। कुछ और क्लोजिंग में कहें, फिर इंशाल्लाह रेगुलरली
2: हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते से जब आएंगे
1: जी जी।
2: लोगों से बातचीत करेंगे तो हम आपको अपनी हर हफ्ते कोई अच्छी टिप दे रहे होंगे आपको, आपकी सेविंग्स के ऊपर आपको हम टिप दे रहे होंगे, हम आपको कभी इन्वेस्टमेंट पे बता रहे होंगे, RESP RRSP। याद रखिएगा, जब गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है, वो RESP हो, RRSP हो, फर्स्ट टाइम होम सेविंग क्या हो, या वो TFSA हो, वो सिर्फ आपके बेनिफिट में होता है।
1: ठीक।
2: उसको आपको मालूम चल जाए तो फिर आपके लिए जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती है इस मुल्क के अंदर।
1: थैंक यू वेरी मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया, फिर अगले हफ्ते आपसे बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर नोट कर लीजिए, 416-722-1111 416-722-1111 careinsurance.ca इनकी वेबसाइट है।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स .ca।
2: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 905-819-1001। लाइसेंस नंबर 12374।
3: तो चलिए जनाब, आपसे चाहेंगे इजाजत, अभी खबरें रिपीट करेंगे 8 बजे करीब। आप फोन पे उसको सुन सकते हैं, टेलीविजन चैनल पे देख सकते हैं, और फिर फौरी बाद हम जो है आपके लिए सोशल मीडिया पे टॉक शो जो है वो शुरू करेंगे। सेम नंबर 416-593-0003 पे आप कनेक्ट होकर इसमें शामिल हो सकते हैं। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी हारने की चीज। एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशत जिंदगी। इंशाल्लाह हमारी आपको मुलाकात होगी अब CMR 11 में कल शाम 7 बजे। स्टूडियो इंजीनियर मरियम, अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे मारा।